FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 होने को हैं। अब से कुछ मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की है प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य

0: से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी के विषय में। अब से कुछ ही देर बाद 6:10 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा 6:15 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुन सकेंगे सुबह 6:45 पर। भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात आप सुन सकेंगे सुबह 8:00। मॉर्निंग न्यूज का समय रहेगा सुबह 8:15। 8:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरसंगम।

सुबह 9 बजे आपको ले चलेंगे जयपुर केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। साहित्य सुगंध में आज आप सुन सकेंगे हिंदी कहानी इतना सा रिश्ता। समय रहेगा 9।

बजकर 15 मिनट। किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार होगा सुबह 9:30 पर। 10 बजे आपको लिए चलेंगे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 11:05 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा दोपहर 1 बजे और 1:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम घर आंगन। दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले मिड डे न्यूज। दोपहर समाचारों का समय रहेगा 2:15।

इंस्टेंट फरमाइश। जी हाँ, सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी सायंकालीन प्रसारण सभा में। कार्यक्रम रहेगा युववाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों के लिए। संस्कृत में समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 और 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

खेती और गृहस्थी आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रहेगा गुलदस्ता। 8:45 पर आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। 9 बजे समय रहेगा News@9 का। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचारों के लिए समय रहेगा रात्रि 11:05।

अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण में आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी के विषय में। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।

साथियों, चिंतन में आज का विचार है, असफलताएं भी देती हैं सीखने के अवसर। सीखने की यूं तो कोई उम्र नहीं होती, कोई परिस्थिति नहीं होती, लेकिन हाँ, जब कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो उसको सीखने के लिए बहुत कुछ अवसर है। आत्मचिंतन के लिए अवसर है कि कमी कहाँ रही, जो करना था वो किया नहीं और जो किया वो करना नहीं था। सीखने का अवसर सिर्फ हालात नहीं देते, हालात के साथ वो परिस्थितियां भी होती हैं, आसपास का वो माहौल भी होता

सीखने की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग पर जोर कब देता है। वो जोर जब देता है जब उसे लगता है कि हाँ जरूरत है, या मजबूरी में। अब अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो ऐसे में उसको रुक कर के सोचना तो पड़ेगा ही कि कमी कहाँ रह गई। और जब आत्मचिंतन के जरिए व्यक्ति उन परिस्थितियों तक, उन बातों तक और उन निष्कर्षों तक पहुंचता है जिन पर चल के व्यक्ति असफलता तक पहुंचा है, या वो फैक्टर ढूंढ ही लेता है कि मेरी असफलता के क्या कारण रहे, और जब व्यक्ति ढूंढ लेता है उन कारणों को, तो फिर एक रास्ता बचता है उनको सुधारने का। जी हाँ, खुद में सुधार करने का। और ऐसे में जो कारण है असफलता के, परिणाम के, फिर उन्हें सुधारने का एक नया प्रकल्प शुरू होता है। ये कहना मुश्किल नहीं कि वाकई में असफलताएं ना केवल सीखने का बल्कि बहुत कुछ सीखने का अवसर देती हैं।

ये बहुत हद तक संभव है कि कोई व्यक्ति सफल हो जाए, तो ऐसे में अपनी कुछ गलत बातों का या गलत निर्णयों का मूल्यांकन वो शायद ना कर पाए, क्योंकि सफलता के उस आगोश में, सफलता की उस खुमारी में वो बहुत सी चीज़ों से चूक जाता है। लेकिन असफलता व्यक्ति को आत्मचिंतन की ओर ले जाती है, ले जाती है उस ओर जहाँ उसे सोचना होता है वो सब कुछ जो उसने किया और वो सब कुछ भी जो उसने नहीं किया। इसलिए ये कहना बहुत हद तक, या ये कहें कि बिल्कुल सही है कि असफलताएं सीखने का, न केवल सीखने का बल्कि बहुत कुछ सीखने का अवसर देती है।

चिंतन में अभी हमने सुना विचार, असफलताएं भी देती हैं सीखने का अवसर। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति रस की इस रचना को अभी आपने सुना पंडित जसराज की आवाज में। FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम वंदना। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

हाल किया, उस दिन भी यही हाल किया, फिर आज मुझे आ घेरा, रुला रुला के बहा दिया तूने सब काजल मेरा। मेरे हाथ लगे तो तेरी बंसी कहीं छुपा दूं,

मत छेड़ मुझे तू छेड़ के ये मुरली की ताने, तेरी इस मुरली ने ली ना जाने कितनी जाने। गली गली में डगर डगर पे तूने नैन बिछाए, किस रास्ते से जाए कोई किस रास्ते से आए। हाँ हाँ।

आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ये गीत हमने लिया है आपके लिए फिल्म नाचे मयूरी से। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को इस अगले गीत में।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर

बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म ज्वेल थीफ में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था एस डी बर्मन का। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान FM 102.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

साथियों, जीवन को अच्छे से जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी हमें मिलती है एक्सरसाइज से, योग प्राणायाम से। तो कहीं ना कहीं लाइफ को अगर अच्छे से जीना है और स्वस्थ जीवन को जीना है तो सुबह सुबह की सैर या कहें कि एक्सरसाइज या योग प्राणायाम के जरिए खुद को सुचारू रूप से एकदम स्वस्थ रखना जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तब ही हम इस दुनिया को देख सकते हैं, इस दुनिया का आनंद ले सकते हैं या ये कहें कि इस दुनिया के किसी काम आ सकते हैं। अगर हम खुद ही अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं, तो ना हम किसी काम के और ना हमारे लिए कोई काम का। क्योंकि अगर बॉडी में अगर कोई समस्या है, शरीर में समस्या है, तो ये मान के चलिए कि जीवन जीना एक दुष्कर काम है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मस्त रहना जरूरी है, कुछ योग प्राणायाम एक्सरसाइज करनी जरूरी है और हाँ, गाने सुनना, गीत संगीत सुनना भी जरूरी है क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सही है।

देखिए, गीत संगीत की बात चल रही थी तो आज का दिन एक खास दिन है, क्योंकि आज है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की जयंती। हिंदुस्तान के एक बहुत ही जाने माने शिक्षा शास्त्री संगीतज्ञ और शास्त्रीय संगीत के बहुत ही जानकार, या ये कहें कि गहन जानकार थे। ग्वालियर घराने से थे और इनके बारे में कहा जाता है कि महामना मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर, उनके रिक्वेस्ट पर, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत के आचार्य पद का, जब वो पहला जो नियुक्ति थी वो इन्हीं की थी, तत्कालीन संगीत परिदृश्य के सबसे आकर्षक अगर व्यक्तित्व कोई थे तो वो थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। 50 और 60 के दशक में पंडित जी की महफिलों का जलवा पूरे देश के मंचों पर छाया रहता था। इनकी गायकी में रंजकता का समावेश तो था ही, साथ में शास्त्र के अलावा भी अपनी गायकी में वो ऐसे रंग उढ़ेलते थे कि सामान्य सा श्रोता, जिसको शास्त्रीय संगीत की भले ही समझ ना हो, लेकिन वो भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। और इनकी जो जानकारी थी, जो इनका ज्ञान था, उसका एक बहुत बड़ा एक वाक्या भी है कि साल 1933 में रोम की यात्रा के दौरान इन्होंने इटली के राजनेता बेनितो मुसोलिनी के सामने अपने संगीत का शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि वो भी उनका मुरीद हो गया। कहना होगा साथियों कि हमारे पास एक बहुत लंबी श्रृंखला है ऐसे लोगों की, ऐसी विभूतियों की, जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं उनके अंश रहते हैं। आज भी हम जो अच्छे संगीतज्ञ हैं, गीतकार हैं, गायकार हैं, कलाकार हैं, हम उनके अंदर वो रंग देखते हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। गीत संगीत अपने आप में दुनिया का एक ऐसा रंग है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। आपने भी ये तय किया होगा, नोट किया होगा कि बिना म्यूजिक तो कोई फिल्म भी नहीं बन सकती। बन जाए तो आप खुद देखिए कि जितनी भी सुपरहिट डुपरहिट फिल्में हैं वो फिल्में गानों की बदौलत हैं। अगर गाने नहीं हैं, संगीत नहीं है, तो फिर तो फिल्म का चलना काफ़ी हद तक मुश्किल है। तो साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू,

0: साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चोरू। चलिए आपको लिए चलते हैं एक भेंट वार्ता की ओर। सुनते हैं समृद्ध प्रकृति, विशिष्ट जैव विविधता और महत्वपूर्ण पक्षी विहार चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य विषय पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार से अमित कुमार की बातचीत।
1: नमस्कार चूरू सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। साथियों आकाशवाणी समय समय पर विभिन्न वार्ताओं और भेंट वार्ताओं के माध्यम से जागरूकताओं के कार्यक्रम चलाता रहता है और आज जब पूरे विश्व में वन्य जीव संरक्षण एक कह सकते हैं हॉट टॉपिक हो चुका है, किस प्रकार बायोडायवर्सिटी है उसका संरक्षण किया जाता है, तो उस पर एक बड़ा संवेदनशील अभियान भी चल रहा है और चूरू में ताल छापर अभयारण्य है वो इसी एक सिलसिले में आता है और हमारे लिए एक ये गर्व का भी बात होता है कि पर्यटन की दृष्टि से ताल छापर अभयारण्य वो चूरू जिले में आता है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है चूरू के सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार जी को आमंत्रित किया है। इनकी हाल ही में वर्तमान में सूजस मैगजीन है जो राजस्थान सरकार की है, उसमें वन्य जीव संरक्षण और ताल छापर अभयारण्य विषय पर बहुत बड़ा आर्टिकल है वो अभी लिखा है, तो किस प्रकार से उनको इस आर्टिकल से प्रेरणा मिली इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने इनको स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो मनीष जी सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।
1: आप पब्लिक सर्वेंट के रूप में जन

0: पर अधिकारी के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं, और इसी भूमिका के इतर एक आप वाइल्ड लाइफ जैसे वन्य जीव संरक्षण में भी आपकी गहरी दिलचस्पी है, जैसा आपका आर्टिकल भी छपा था छापर में ताल छापर अभ्यारण्य, इसके बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान में जितने भी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी टूरिज्म जो है वो और माइनिंग जो है अपने खनन होता है, अपना ताल छापर जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूरू जिले में जो विशेष तौर पे जो टूरिज्म की या अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं वो सालासर बालाजी मंदिर है अपना, वो और ताल छापर के लिए ही जाना जाता है। ताल छापर जो अपना अभ्यारण्य है वो केवल राजस्थान नहीं बल्कि आज पूरे विश्व में जो है अपने एक अलग पहचान रखता है, और देश के महत्वपूर्ण जो पक्षी विहार होते हैं उनमें भी ये एक जो है वो शामिल है। ताल छापर जो है यह अपना क्या है, चूरू जिला एक मरुस्थलीय जिला है, और ताल छापर इस मरुभूमि के बीच में एक ऐसा इलाका है जहाँ वन्य जीव जो है उसके संरक्षण के लिए या वन्य जीवों के लिए एक अलग ही जीवन है। अपन जब वहां जाते हैं तो अपन देखते हैं कि वो प्रकृति, वो नजारा, वो सारी चीजें जो है वो अपने को पूरी दुनिया से अलग कर देता है, और अपने को बहुत ही अलग अनुभूति जो शांति की, सुकून की जो है वो होती है। अपना जो है ताल छापर जो है वह शोधकर्ताओं के लिए भी और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है जो आजकल बन गया है। ताल छापर जो है, ताल छापर में विशेष तौर पे जो ये काले हिरणों के लिए, वैसे तो हिरण जो होते हैं लेकिन यहाँ कृष्ण मृग होते हैं, ये कृष्ण मृगों के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो है वो कृष्ण मृग पाए जाते हैं। जब अपन अभ्यारण्य का भ्रमण करते हैं तो कृष्ण मृगों की अटखेलियां जो है वो अपने मन को जो है वो रोमांचित करती हैं।
0: जी, जिस प्रकार से आपने ताल छापर अभ्यारण्य के बारे में जो शोध किया है और आपने जो जानकारी एकत्रित की है वो निश्चित रूप से सराहनीय भी है, और हमारे अन्य जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए एक रिसर्च का विषय है कि किस प्रकार से ताल छापर अभ्यारण्य पर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें संरक्षण किया जा रहा है। एक जो अहम बात आती है सामने कि जब आप बात करते हैं इन अभ्यारण्य की, पक्षी और हिरणों है जो इस अभ्यारण्य में है जिसको देखकर हम अपने आप में आकर्षित होते हैं।
1: अमित जी, जो चूरू का ताल छापर जो वन्य जीव अभयारण्य है यह विशेष तौर से तो कृष्ण मृग और अपनी घास भूमि के लिए जो है वो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। चूरू के जो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य है उसमें काले हिरणों के साथ साथ जो अपने सामान्य जो हिरण है वो मिल जाएंगे, अपनी जो नीलगाय है, चिंकारा है, डेजर्ट फॉक्स है, डेजर्ट कैट है, जैकाल जो है, और सुअर, जंगली बिल्ली, खरगोश, ये और वन्य जीव है ये भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही ये पक्षियों के लिए बहुत बड़ा पक्षी विहार है, मतलब पक्षी विहार है। यहाँ अपना जो राजस्थान की संस्कृति में कुड़जा जो है, जिसे अपने राजस्थानी संस्कृति में बहुत सारे लोक गीतों की जो अपन संरचनाएं देखते हैं उसमें कुड़जा पक्षी जो है वो भी यहाँ नवंबर से लेकर के और जो है सर्द जो मौसम होता है उस दौरान यहाँ भ्रमण करने आते हैं, और बहुत सारे जो विदेशी पक्षी जो है वो भी यहाँ प्रवास के दौरान आते हैं। चूरू का जो कृष्ण मृग अभयारण्य है उसमें जो पक्षी जो है उनकी बात करें तो ब्लैक शोल्डर्ड काइट जो है, लेगर फाल्कन, रेड नेक्ड फाल्कन, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रीफन वल्चर, यूरेशियन ग्रीफन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, पैलेड हैरियर, मॉन्टेग्यू हैरियर, ब्लैक फ्रेंकोलिन, कॉमन केस्टल, बेलिड सैंड ग्राउज, व्हाइट ब्राउड फेंटेल, ब्राउन रॉकचेट, यूरेशियन कलर्ड डव जो होती है, स्पॉटेड आउटलेट जो है, इंडियन स्कॉप्स ओवल जो है, कॉमन कूट है, लिटिल ग्रेब है, नॉर्दर्न स्वावलर है, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक है, ये जो पक्षी हैं ये विशेष तौर पे अपन यहाँ देख सकते हैं।
0: जी, आपने जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें पाए जाने वाले जो पक्षियों की विभिन्न वेराइटियाँ हैं, अपने कह सकते हैं किस्में हैं, उनके बारे में बहुत गहराई से बताया। एक और जो हमारा सौभाग्य भी होगा कि जो ताल छापर अभयारण्य है एक उसी साइड में सालासर बालाजी मंदिर है, तो एक टूरिज्म का हॉटस्पॉट है, वहां से डेवलप होता है, निश्चित रूप से उससे राजस्व की भी आय प्राप्त होता है। एक जो अहम जो सवाल है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभयारण्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है अगर उस वो किस प्रकार के प्रयास है और कहाँ तक उनको क्रियान्वित हो चुके हैं।
1: मैं बताना चाहूंगा अमित जी आपको, सरकार जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये विभिन्न पहलुओं पे वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के और विशेष प्रयास करती है। अपना चूरू का जो ताल छापर जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन भी है वो सरकार की ओर से घोषित किया गया है। इस इको सेंसिटिव जोन में विभिन्न गतिविधियां हैं जो आयोजित की जाएंगी, जो विभिन्न एक वन्य जीवों के

0: संरक्षण के लिए जो है वो सभी विभागों के मिलकर के काम होंगे। कमेटी का गठन भी किया गया है, कमेटी भी जो है अपने स्तर से जो इको सेंसिटिव जोन के जो दिशा निर्देश होते हैं उनकी पालना करेगी और करवाएगी। इसी के साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो है वो वन्य जीवों को संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चूरू का तालछेपर अभयारण्य है, इसमें भी एक प्रयोग वन विभाग ने किया है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि काले जो मृग हैं, कृष्ण मृग हैं, उनका ट्रांसलोकेशन इन्होंने किया है। तालछापर से थोड़ी ही दूरी पर एक जसवंतगढ़ लोकेशन है, वेटलैंड एरिया, वहां सरकार की तरफ से विकसित किया गया है और वहां जो काले हिरण है उनको ट्रांसलोकेट करके जो सफलतापूर्वक कर लिया गया है वहां ट्रांसलोकेट करके और एक नया जो है वो वाइल्ड लाइफ हब वहां विकसित करने के प्रयास है। वहां ग्रासलैंड डेवलप की गई है, वहां हिरण है। पिछले जो दिन थे बरसात के वहां अच्छी खासी संख्या में जो है विदेशी प्रवासी पक्षी जो है वो भी वहां आए थे। इसी के साथ जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 3 सालों से यहाँ जो है वो पक्षी महोत्सव का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। पक्षी महोत्सव में सरकार का, जिला प्रशासन का यह प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्थानीय लोगों को जोड़ें ताकि तालछापर जो है वो स्थानीय लोगों के जुड़ने से उसका संरक्षण संवर्धन है वो ज्यादा हो पाएगा। पक्षी उत्सव में जो विद्यार्थी हैं उनको, युवाओं को, एनजीओज होते हैं जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उनको, आमजन को, महत्वपूर्ण लोग हैं और वन्य जीवन से जुड़ाव रखने वाले और पर्यावरण प्रेमी लोगों को उससे जोड़ करके, और जैसे उसमें तालछापर वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण करवाया जाता है, वहाँ पक्षियों से जुड़ी, वन्य जीव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रदर्शनी के माध्यम से और वैसे भी साझा की जाती है, और विशेष पक्षी विशेषज्ञ हो गए, वन्य जीव विशेषज्ञ हो गए, उनके विशेष सत्रों का आयोजन किया जाता है ताकि बड़ी संख्या में लोगों को जो है वो वन्य जीव और उनके संरक्षण से जुड़ी जानकारी जो है लोगों को मिल सके।
1: जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। एक वन्य जीव प्रेमी एवं पर्यटन प्रेमी होने के नाते अगर कोई व्यक्ति तालछापर अभयारण्य घूमना चाहता है तो उसको कौन से समय पर वो सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा, उस समय क्या क्या सुविधाएं उसको मिल रही?
0: पक्षी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी यदि तालछापर घूमना चाहते हैं तो चूरू जिला प्रशासन, चूरू के लोग और वन विभाग, चूरू की जनता उनका तहे दिल से स्वागत करती है। तालछापर वन्य जीव अभयारण्य जो है उसमें वैसे तो यह 12 महीने खुला रहता है और आमजन इसका विजिट कर सकते हैं कभी भी। हालांकि अपन एक देखें कि अपन जब वहां जाएं वन्य जीवों के बारे में अपने को समुचित जानकारी मिले, अधिक से अधिक अपने को लाभ मिले, अपन ये सोचें तो नवंबर के महीने से लेकर के और फरवरी का जो महीना होता है साल का, ये सर्दियों का जो मौसम होता है यह सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें प्रवासी पक्षी जो है कुड़जा जो है वो और बहुत सारे जैसे कि आपने पहले चर्चा कर चुके हैं वैसे प्रवासी पक्षी जो है वो बड़ी संख्या में वहाँ देखने को मिलते हैं। ये कृष्ण मृग जो है वो भी जैसी ठंड होती है तो ज्यादा अपने को खुले में देखने को मिलते हैं। चूरू की धूप जो है वो बहुत, चूरू की गर्मी जो है वो वैसे ही अधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो आपको प्रकृति का नजारा और ही अद्भुत लगेगा, आपको और ज्यादा रोमांचित करेगा और चूरू की धरती आपको बार बार पुकारेगी कि आप यहाँ आए।
1: जी, निश्चित रूप से जो पर्यटन प्रेमी हैं, जो वन्य जीव प्रेमी हैं, उनके लिए जो तालछापर अभयारण्य है एक स्वर्ग से कम नहीं है। जो आपने बहुत अच्छी जानकारी है वो हमारे श्रोता साथियों को दी है। कार्यक्रम के अंत में वन्य जीव संरक्षण के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि अपन अपने परिवेश में जो भी पशु पक्षी हैं, अपनी अपना पर्यावरण जो है वो सबसे मिलकर के बनता है, उसमें प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। हम सभी पक्षियों का, वन्य जीवों का या सामान्य जीवों का भी जो है वो अपन संरक्षण करें। अपन अभी मानसून चल रहा है, अपन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन जो है वो लोगों को प्रेरित करें कि वो पौधरोपण करें, पौधरोपण गतिविधियों में हिस्सेदारी करें। एक गर्मियों के दौरान अपन ने जो है वो कोशिश करें कि अपने घर में कम से कम एक पक्षियों के लिए परिंदा जो है वो जरूर हो।
1: जी मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित बहुत बेहतरीन जानकारी दी है। निश्चित ही हमारे जो श्रोता साथी इस जानकारी का सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। समृद्ध प्रकृति, विशिष्ट जैव विविधता और महत्वपूर्ण पक्षी विहार चूरू का तालछापर वन्य जीव अभयारण्य विषय पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार से अमित कुमार की बातचीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू, आकाशवाणी केंद्र चूरू से।

साथियों, इस प्रकृति ने जिसे भी बनाया है उसकी बहुत उपयोगिता है, बेशक हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन उपयोगिता तो है ही। तो जितने भी जीव जंतु हैं हमारे आसपास, उनका संरक्षण हमारी ही जिम्मेदारी है। अभी आपने जो भेंट वार्ता सुनी, उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। और हमारे चूरू के अंचल में जो पक्षियों के विषय में अभी आपको जानकारी मिली, इससे भी आपको अच्छा लगा होगा। कभी घूमने का मौका मिले तो ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में जरूर जाएं और अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपेंड हैं हम पर। और हम पर डिपेंड भले ही ना हो, थे भी नहीं, लेकिन प्रकृति में इंसान ने इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब वो चाह कर के भी इंडिपेंड नहीं है। जी हाँ, डिपेंड हैं कहीं ना कहीं हमारी हरकतों पर, हमारी तरफ से जो काम हो रहे हैं, जो एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है इस प्रकृति के अंदर, उसके कारण से जानवरों को हमारी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, पशु पक्षी भी प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में न सिर्फ अपना ध्यान रखें बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पूरा एक चक्र है। सभी जीव जंतु एक चक्र में आते हैं, अगर कहीं ना कहीं ये चक्र बाधित होता है तो उसमें बाधा फिर हमें यानी इंसानों को भी आएगी।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश।

आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

तो साथियों, समय सीमित होता है, इस कार्यक्रम का भी सीमित है। फिलहाल इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त कनिष्क को। नमस्कार।

0: एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

0: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
2: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
2: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को

0: अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं।

0: दैनिक भास्कर ने सीयूईटी परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
2: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad.

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: सूफियों संतों के यहां मौत का तसव्वुर बड़े खूबसूरत रूप लेता है। कभी नैहर छूट जाता है, कभी चोला बदल लेता है, जो मरता है वो जी उठता है।

तरह तरह से अंत आनंद की बात करते हैं। कबीर के यहां यह ख्याल कुछ और करवटें भी लेता है। एक बेतकल्लुफी है मौत से जो जिंदगी से कहीं भी नहीं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। माटी का शरीर माटी का बर्तन, नेकी कर भला कर, भर बर्तन में पाप पुण्य और सर्पेले।

0: सुगम संगीत में आज हमने सुना आबिदा परवीन को FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी हितधारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
2: सिल्क बोर्ड 26,000 मेट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
1: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के

वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1,538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बम्बाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देशभर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग

0: उक आरपीएससी ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी केंद्र चूरू का प्रसारण है। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं साहित्य सुगंध में हिंदी कहानी इतना सा रिश्ता। वाचन स्वर है स्नेहलता शर्मा का।
1: सामने कुर्सी पर बैठे पंडित जी को देख कामिनी के दोनों हाथ बरबस जुड़ गए अभिवादन में। नित्य क्रम बन गया है यह उसका। शाम ढले जब वह स्कूल से लौटती तो यह वृद्ध मानो उसी के इंतजार में रहता। घर के आगे जो कभी सफेद थी अब मटमैली हो चुकी कुर्सी में अपना जर्जर शरीर धंसाए बूढ़ा चुकी नजरों से दूर से आती कामिनी को देख प्रफुल्लित हो बोल उठते, कहो कैसी हो बिटिया, कर आई समाज सेवा। ये सुन न चाहते हुए भी 2 मिनट उसे रुकना पड़ता। सिर्फ रविवार या कोई छुट्टी का दिन होता जब यह क्रम विराम पाता, तब मन होता कामिनी का कि चल कर देख आए उन्हें। लेकिन 6 दिनों के बाद मिले अवकाश को भुनाने का लोभ वह छोड़ नहीं पाती। जब कभी रोहन के साथ उनकी चर्चा छिड़ जाती तो वे हंस पड़ते, तुम भी अजीब हो, क्या लगता है वह बूढ़ा तुम्हारा। रास्ते में बैठा एक अपाहिज बेकार आदमी जिसके पास पुरानी घिसी पिटी बातें करने के सिवा कुछ नहीं, ये सुनकर अंदर तक हिल जाती है। क्या एक दिन उसे भी रोहन यूं ही तिरस्कृत कर देंगे। बूढ़ा हो जाने से ही क्या इंसान बात करने के योग्य नहीं रह जाता। अच्छा हुआ रोहन के माता पिता पहले ही चल बसे। लेकिन कामिनी ने सदैव वृद्धों के प्रति अजीब सा खिंचाव महसूस किया है। झुर्रीदार दंत विहीन मुख वाले स्त्री पुरुष उसे लुभाते हैं, अनुभवों की कथा सुनाने को बेताब। हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में MA पास पंडित जी के आकर्षण में वह बंसी गई। इनकी बेटी कभी छुटपन में साथ ही पढ़ी थी, बस तब से ही परिचय है कामिनी का। एक जमाना था जब इनके आगे विद्यार्थियों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन विद्यादान को कभी व्यवसाय नहीं बनाया इन्होंने, ये उनकी बेटी मधु बताया करती थी। आज भी जो ही उसने हाथ जोड़े आशीर्वचनों की झड़ी लगा दी पंडित जी ने। समाज सेवा का नाम ही देते हैं शिक्षा कर्म को पंडित जी, उनकी नजर में इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। कामिनी ने हंसकर कहा, गुरुजी आज के शिक्षक तो अपनी ही सेवा में लगे हैं, समाज की कहां से कर पाएंगे। फिर जमाने के साथ तमाम परिभाषाएं भी तो बदल गई है। यह सुनकर लंबी सांस खींचकर पंडित जी बोले, बिटिया इस बदलती हवा को दोष दें कि खुद इंसान काट रहे हैं अपनी ही बोई फसल को। कहीं न कहीं गलती हम ही से हुई है जो ऐसी पैदावार हो गई। पंडित जी आगे कुछ कहते इससे पहले ही कामिनी खिसक ली घर पर पति बच्चों का बहाना बनाकर, वरना आधा घंटा तो गया ही समझो। घर आकर पति बच्चों और घर के कामों में चक्कर घिन्नी सी जो घूमती, रात के 11 बज जाते और पंडित जी उसके जेहन से निकल जाते अगले दिन की शाम होने तक। सुबह उठकर फिर वही भाग दौड़ और उसके बाद स्कूल। दिन भर बच्चों के बीच कामिनी सब कुछ भूल कर उनके नवीन भविष्य निर्माण की चेष्टा में लगी रहती। स्कूल से लौटते वक्त फिर ख्याल आया पंडित जी का, लेकिन कहीं नजर नहीं आए। वह खुद को रोक नहीं पाई और दरवाजे पर जाकर बेल बजा ही दी। एक 10 वर्षीय बालक ने द्वार खोला जिसे वह अक्सर गली में खेलते देखा।

आती है। उसने पूछा, तुम्हारे बाबा कहीं बाहर गए हैं, आज नजर नहीं आए। लड़के ने उत्तर देने के बजाय अपने माँ को बुलाया कि देखो कोई आंटी बाबा को पूछ रही है। आवाज सुन एक भद्र महिला बाहर आई तो उसने हाथ जोड़ नमस्ते किया और बोली, मैं कामिनी आपके पीछे वाली गली में। इतना सुनते ही वह महिला बोल पड़ी, अजी बहन जी, हम सब जानते हैं आप रोज ससुर जी से बतिया कर जाती हो, हमारी मधु दीदी के साथ पढ़ी हो, क्या आपको नहीं पहचानेंगे? आज पंडित जी नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं। अब क्या बताएं बहन जी, बुढ़ापा, ऊपर से मर्दानगी, किसी की नहीं सुनते। लाख मना किया बाहर न निकलो धूप में, आखिर आ गए चपेटे में, पड़े हैं बुखार में। इतना सुन कामिनी का मन हुआ लोट पड़े। चलने को हुई कि महिला बोल उठी, अब आ ही गई हैं तो मिल लीजिए, बढ़ऊ खुश हो जाएंगे। इतना बोल कामिनी को अपने पीछे आने का इशारा कर चल पड़ी। अंदर जाकर देखा सहन में एक तरफ खाट पर सो रहे हैं पंडित जी, पास के स्टूल पर दवा की शीशियां और पानी का गिलास रखा है। वहीं रखे मूढ़े पर बैठते हुए उसने होले से पूछा, कहिए कैसी तबीयत है? पंडित जी आंखें खोलकर पंडित जी ने देखा और बोले, ताप ने धर दबोचा है, शायद 3-4 दिन लग जाएं। इतना बोल उठने की कोशिश की तो कामिनी ने हाथ से रोकते हुए कहा, नहीं नहीं आप लेटे रहिए, मैं तो यूं ही चली आई आपको बाहर न पाकर। पंडित जी ने बहू की तरफ देखा, शायद जलपान के लिए कुछ कहना चाह रहे हों। तो कामिनी झट से उठ खड़ी हुई, देर हो जाने का बहाना बनाकर क्षमा याचना कर चल पड़ी। रास्ते में वही लाचार बेबस उदास चेहरा घूमता रहा जेहन में। घर आकर चाय पीते रोहन से उनकी बीमारी का जिक्र किया तो व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब मिला, अरे बूढ़ा बीमार हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, क्या हम तुम बीमार नहीं होते? बुखार ही तो है, हो जाएगा ठीक, फिर भी अगर ज्यादा ही फिक्र है तो ले आइए घर पर, अच्छी सेवा हो जाएगी। फिर हो कर हंसने लगे। इतना सुन कामिनी कुछ न बोल अपने काम में जुट गई। रात में सबको खिला पिला कर सोने की चेष्टा करने लगी, लेकिन रह रह कर वह वृद्ध चेहरा आंखों के आगे आ जाता। अगले रोज स्कूल से लौटते फिर पांव न जाने वहीं क्यों रुक गए। घर का दरवाजा खटखटाने पर भी जब किसी ने न खोला तो रहा नहीं गया और उड़काया गेट ठेल कर अंदर प्रविष्ट हुई। कोई भी नजर नहीं आया, शायद बाहर गए हुए हैं। यह सोचकर वापस मुड़ने की हुई कि क्षीण आवाज सुनाई दी, चली आओ बेटा अंदर। एक झिझक के साथ वह बढ़ चली अंदर की ओर। उनके पास आकर बैठ गई तो पंडित जी का चेहरा खिल उठा, आ गई बेटिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, घर के सभी लोग शादी में गए हैं। इतना बोल कामिनी को देखा तो उसका दिल रो उठा अंदर ही अंदर, उस बुजुर्ग का एकाकीपन देख जो संबल चाह रहा था किसी अपने का। सोचा चलते हुए आपका हाल पता करती चलूं, आज कुछ बेहतर है तबीयत? हाँ आज ज्वर तो कुछ कम है, लेकिन यह तो अल्पकालिक व्याधि है, जिस दीर्घकालिक व्याधि से ग्रस्त हूँ वो तो देह के साथ ही छूटेगी बेटा। लंबी सांस लेकर कहीं शून्य में खो गए पंडित जी। घर वालों की अनुपस्थिति में ज्यादा देर पराए घर में रुकना उचित न होगा, इसलिए जाने को उद्यत हुई तो पंडित जी फिर बोल उठे, कुछ समय के लिए रुक न सकोगी इस बूढ़े के पास, सुबह से किसी इंसानी आवाज को सुनने को तरस गया हूँ। आग्रह अनुनय या आदेश कुछ तो था इन शब्दों में कि वह पांव बढ़ा नहीं पाई। वापस बैठ गई तो संतोष का भाव उनके चेहरे पर उभरा, फिर बोले, बेटा अतिथि सत्कार के काबिल तो नहीं रह गया हूँ अपने ही घर में, बस मेरे भावों का आद्य और पाद्य ग्रहण करो, अकेले में बेचैनी हो रही थी, अच्छा लगा तुम्हारा आना, कभी मेरे पास भी फुर्सत के पल न थे, लेकिन आज इतने हैं कि व्यतीत कर पाना मुश्किल लग रहा है। तुम्हें तो पता है एक ही बेटा है मेरा जो कमाने खाने बहुत दूर गया है, जहाँ बच्चों के रखने की व्यवस्था नहीं, इसलिए बहू मुझ बूढ़े के पास टिकी है बच्चों को लेकर। लगातार इतना बोलते ही दम फूलने लगा और रुक गए, फिर पुनः कहने लगे, जहाँ तक हो सके मैं मेरा काम खुद ही करना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता है कितने कर चुकाए हैं इस जन्म में, अगले जन्म के लिए नहीं बढ़ाना चाहता बेटी, सब कर्मों का फल है, नहीं तो और क्या, वरना मेरी मैंने क्या कमी छोड़ी थी मधु के लिए जो इस तरह हमें ठुकरा कर गैर के साथ चली गई। इतना कह नम हुई आंखों को पोंछने लगे। कामिनी ने सकुचाते हुए अपना हाथ उनके हाथों पर रखा, मौन सहानुभूति के लिए, कुछ बोल नहीं पाई। बेटा दिल में बड़ी घुटन है, इसलिए कह लेने दो सब, बस थोड़ा सा ही वक्त लूंगा तुम्हारा, ज्यादा नहीं। तुम्हें तो पता है मधु की माँ कितनी कुशल और सुघड़ सलीकेदार औरत थी, जिसने इस घर को मंदिर के समान पूजा, देवी थी इसलिए मुझसे पहले ही इस पापी संसार के माया जाल से मुक्त हो गई। आज पूरे 10 साल हो गए उसे विदा हुए। इस अवधि में मैंने संसार को जाना, रिश्तों को पहचाना, पहले सिर्फ ऊपर से परिचय था जगत से मेरा,

पत्नी के जाने के बाद मानवीय मूल्यों की पहचान हुई। जिन आदर्शों को पुस्तक में पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाता रहा था, वे आज सब खोखले प्रतीत हो रहे हैं। बड़ा अभिमान था खुद पर कि मैं एक सफल शिक्षक हूँ, एक छोटा सा खुशहाल परिवार और सर छुपाने यह घर। लेकिन आज यह सब मिथ्या लग रहा है, मानो सोते से जग गया हूँ। बहू सोचती है बूढ़ा कब खाट छोड़े और वह आजाद हो। सबके लिए एकदम नकारा, बस एकमात्र पेंशन है जो मुझे दो वक्त की रोटी मिल रही है। अब तुम ही बताओ, किसके साथ बांटू अपने दुख दर्द? ऐसा अवांछित जीवन भी कोई जीवन है? महीनों बीत गए, बेटे से बात हुए। इतना एक साथ बोलकर अवरुद्ध हो आए गले से शब्द न निकल पाने के कारण मौन हो गए पंडित जी। कामिनी स्तब्ध रह गई यह सब सुनकर। बाहर से शांत दिखने वाला इंसान अंदर से इस कदर टूटा बिखरा होगा, उसे कल्पना भी न थी। वह समझ न पाई अपने से दुगनी वयस के उस बिलखते पुरुष को कैसे दिलासा दे। यह भी आशंका थी कि कहीं इस बीच उनकी बहू आ गई तो कैसा लगेगा उसे यह सब देखकर। फिर कुछ सोचकर पंडित जी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, पंडित जी आप तो काफी समझदार हैं, मेरे जैसे लोगों के आदर्श रहे हैं, इस तरह से नहीं सोचें, हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। सहानुभूति का परस पाकर बिखर उठा वह व्रत स्वयं को सुस्थिर करने की चेष्टा कर इतना ही बोल पाया, बस यही तो दुख है कि समझदार हूँ, वरना अब तक जिंदा न रहता। अपने ही घर में इतना तिरस्कार पाकर भी कोई जी सकता है भला? लेकिन मैं जिंदा हूँ, सब कुछ बेटे बहू को सौंप कर आज अनाथ हो गया हूँ। यह पैसा, यह धन, यह दौलत, यही सब नाथ है, हम सबका मालिक, इसके बिना हम कुछ भी नहीं। अच्छा बेटा, अब तुम जा सकती हो, तुम्हें देर हो गई, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। वह कुछ नहीं बोल पाई, निःशब्द वहां से निकल पड़ी। जल्दी जल्दी घर आकर देखा, 8 साल का बेटा मायूसी से उसका इंतजार कर रहा है। उसे देखते ही खिल उठा और मम्मी मम्मी कहकर लिपट गया। क्या ये ही बच्चे बड़े होकर मुझसे भी उतने ही दूर चले जाएंगे? सोचकर ही सिहर उठे वह। किस तरह तड़प उठती है वह बच्चों को खरोंच भी लगने पर। लेकिन क्या बच्चे महसूस करते हैं वैसी पीड़ा माँ बाप के कुछ हो जाने पर? आज उसने हमेशा की तरह चिंटू को गोद में नहीं उठाया। थके कदमों से आकर चल पड़ी अंदर की ओर, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने। अपना कर्तव्य समझकर कि उनके बड़ा होने तक उनका ख्याल रखने भर को है वह, बस इतना सा रिश्ता है उनके साथ। सब कुछ यंत्रवत करती रही कामिनी चुपचाप, और आखिरी जब काम खत्म हो गया तो निढाल पलंग पर लेट गई, शून्य में निहारते पता नहीं कब आंख लग गई। जैसे ही घंटे की टन टन आवाज सुनाई दी, बगल में सोए रोहन कुनमुनाए, लेकिन वह झट से उठ बैठी। ये क्या, आज 7 बज गए, रविवार होने से अलार्म न बजा और वह सोती रह गई, क्या दूध वाला आ गया? वह पांव में चप्पल डाल गेट खोलने चल पड़ी। दरवाजा खोलते ही देखा तो सामने वाले शर्मा जी का लड़का विकास था। विकास बोला, आंटी कल रात पीछे वाली गली में रहने वाले पंडित जी का देहांत हो गया, सुबह 10 बजे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। घर में कोई पुरुष न होने की स्थिति में मोहल्ले वालों को ही करना होगा सब कुछ। पंडित जी के देहांत की बात सुनकर सन्न रह गई कामिनी। क्या पंडित जी नहीं रहे? विश्वास नहीं हुआ, कहीं गलत तो नहीं सुना उसने? विकास तो चला गया, किससे पूछे? ऐसे कैसे कोई इंसान जा सकता है, कल ही तो घंटे भर बातें की है उससे। भारी कदमों से दरवाजा बंद कर अंदर आकर रोहन को जगाया। पड़ोसी होने के नाते जाना ही होगा उन्हें। रोहन झल्ला कर बोले, क्या है, छुट्टी के दिन भी कोई सो नहीं सकता इस घर में? सो तो सकते हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए सो गए हैं उनका क्या? ठंडे स्वर में कामिनी बोली तो हड़बड़ाकर उठ बैठे रोहन। तुम किसकी बात कर रही हो? पंडित जी नहीं रहे, इतना कह सिसक उठी वह। न चाहते हुए भी रुलाई फूट पड़ी उसकी। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिलासा देनी चाही, उसे सहलाते हुए पूछा, कब हुआ यह सब? अभी शर्मा जी का लड़का विकास बोलकर गया है, कल रात चल बसे। चलो अपन भी चलते हैं, 10 बजे उन्हें ले जा जाएगा, मुझे अंतिम दर्शन करने हैं। फटाफट बच्चों को उठाकर दोनों ने बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद चाय पी। कामिनी के हलक से चाय नीचे नहीं उतर रही थी। रोहन ने आग्रह कर पिलाई और 9 बजते बजते पंडित जी के घर जा पहुंचे। देखा तो मोहल्ले भर के लोग मौजूद थे, उनके पास शिक्षा ग्रहण कर चुके हर तबके के सैकड़ों लोग मौजूद थे, शहर के गणमान्य नागरिक कंधा देने को तैयार, न था तो एकमात्र उनका उत्तराधिकारी स्वयं का पालित पुत्र, जो बार बार फोन करने के बावजूद नहीं मिल पाया। जहाँ काम करता था वहाँ के लोगों ने बताया, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया था, शायद विधि को

0: यही मंजूर था कि बस नाम भर का रिश्ता रहे पुत्र के साथ। 10 बजते ही अपने शिष्यों के कंधों पर सवार हो पंडित जी चल पड़े महायात्रा पर कभी न लौटने के लिए। तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। इतना भी क्या जल्दी थी, बेटे या बेटी का इंतजार भी नहीं किया? प्रत्युत्तर में किसी ने कहा, ऐसी मौत पर भला इंतजार किया जाता है? कहीं पुलिस को भनक लग जाती तो लेने के देने पड़ जाते। सारा शरीर नीला पड़ गया था। राम जाने बूढ़े ने खुद जहर खाया या किसी ने खिला दिया। स्तब्ध रह गई कामिनी। ऐसे इंसान की ऐसी गति, इन सब से बेखबर शान से चले जा रहे थे पंडित जी अंतिम यात्रा पर। शत शत कंठों से निकल रही राम नाम सत्य की ध्वनि माहौल को शोकाकुल बना रही थी। पर वस्तुतः यह शोक किसको था?
1: अभी आपने सुना साहित्य सुगंध में हिंदी कहानी इतना सा रिश्ता। वाचन स्वर था स्नेहलता शर्मा का।
2: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी
1: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार।

आज के कार्यक्रम चित्र संसार में हमने जो फिल्म आपके लिए खोजी है गानों के लिए बातों के लिए, उसका नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, अपने दौर की बहुत ही प्रसिद्ध और बेहद म्यूजिकल गानों के हिसाब से सुपर डुपर हिट फिल्म थी साल 1989 की लाल दुपट्टा मलमल का।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर रखना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं। ये गीत जिस फिल्म से है, लाल दुपट्टा मलमल का, ये फिल्म आई साल 1989 में। जी हाँ, म्यूजिकल एरा की एक सुपर डुपर हिट फिल्म।

फिल्म की अगर बात करें तो इसमें किरदार थे साहिल चड्ढा और वेवरली का, जो आपस में प्रेमी प्रेमिका रहे। और इस फिल्म की एक खास बात यह है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में पारंपरिक रूप से रिलीज़ नहीं हुई थी, बजाय इसके वीडियो कैसेट्स रिलीज़ किए गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि गुलशन कुमार ने पहले एक म्यूजिकल एल्बम रिलीज़ किया और वो जब सुपरहिट रहा तो उसी म्यूजिक एल्बम्स को लेकर के एक फिल्म बनाई जिसका नाम रहा लाल दुपट्टा मलमल का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

इस म्यूजिक एल्बम के रिलीज होते ही 2 करोड़ कैसेट हाथों हाथ बिक गए, और इसके बाद में इन गानों का जो एक दौर आया, पूरे देश में ये गाने छा गए। साल 1989 में इस फिल्म को बना करके रिलीज़ किया गया, और एक दौर था जब मेलोडीज़ गानों की कमी हो गई थी, उस कमी को पाटते हुए, कम करते हुए इस फिल्म ने, लाल दुपट्टा मलमल म्यूजिक एल्बम ने, उस कमी को पूरा किया और फिर से एक दौर शुरू किया।

फिल्म की कहानी है एक खूबसूरत बर्फीले गांव की। यहाँ रहते हैं दो प्रेमी शब्बो और शालू। शालू एक रईस पिता की बेटी है जिसके पिता अपने गांव में बहुत ही रईस हैं, रसूखदार हैं, जिस पर कि कुछ असामाजिक तत्व उससे छेड़छाड़ करते हैं और शालू अपने बचाव में उसके हाथ से एक हत्या हो जाती है। उसी हत्या को अपने सर उसका प्रेमी यानी शब्बो अपने सर पर ले लेता है, उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। और फिर उसके बाद में इस फिल्म में आगे क्या होता है, किस तरह से नाटकीय अंदाज में ये दोनों बचते हैं, इस फिल्म को आगे बढ़ाती है फिल्म की ये कहानी।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: किसी एक फिल्म के गानों को लेकर आप तक लाते हैं प्रोग्राम हम चित्र संसार। बस आप यही प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू से। एक बर्फीले गांव के प्रेमी प्रेमिका की त्याग, न्याय और संघर्ष की कहानी है ये फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के,

साथियों, जब समय बदलता है तो उन लोगों को, उन बातों को, उन किस्सों को याद रखा जाता है जिन्होंने उस दौर को बदला है। एक दौर था जब मेलोडियस गाने खूब बना करते थे, और एक दौर आया कि मेलोडियस गानों की कमी हो गई, या यूँ कहें कि बनने कम हो गए। उस दौर में ये जो फिल्म, ये म्यूज़िक एल्बम रिलीज हुआ, लाल दुपट्टा मलमल का, इस फिल्म ने, इस म्यूज़िक एल्बम ने मेलोडियस गाने को एक बार फिर से हवा दी, या यूँ कहें कि एक दौर की शुरुआत करी। और उसके बाद से उस दौर को याद किया गया अपने शानदार म्यूज़िक और जानदार गानों के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार FM 100.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। विविध भारती के कार्यक्रमों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15,
1: आना आ भी जाना इंतजार है तेरी।
0: फिल्म मुल्क,
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़,
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नमसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: बेखबर, बेखबर।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो।
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को

0: घर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
1: जी।
0: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
1: जी,
0: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोक से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ।
1: जी जी।
0: ये 1984 का जमाना था।
1: कितने बड़े थे आप?
0: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओह, तब तो बहुत छोटा।
0: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी,
0: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ। और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर,
0: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी।
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना, बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई।
1: ओ।
0: और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मकता कहते हैं।
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने,
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम।
0: हाँ, तो वो, हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी,
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है।
1: हाँ।
0: क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका।

0: बहर वही है, खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो
0: बिल्कुल
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप, मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़ख्म भरते ही।
0: जी,
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी जी,
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है

0: वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राणी है
1: जी।
0: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल।
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके बाप के
1: यहाँ। बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
1: चल रही थी।
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
1: जमा
0: थे,
1: हो रहे थे,
0: और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
1: जी।
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
1: जी,
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है
1: उस...
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है,
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह,
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
1: जी,
0: हम
1: जी।
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ।
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, नानी की जो बातें हैं आपने जिक्र किया, नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है याद है।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने, माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है।

0: लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था उस जमाने में, टीबी लाइलाज था
1: जी जी,
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी मामू से, अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ,
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में
1: जी, सूरत में
0: जी।
1: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की
1: जी, शीन काफ निजाम भी आया था इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है,
1: कुंडली आपकी पता है लेकिन अभी श्रोताओं तो
0: सारी तो, उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी,
0: सब
1: जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी,
0: मुल्क
1: जी,
0: में
1: जी।
0: संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
1: जी जी।
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी,
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरी था। हाँ,
0: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात।

0: इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहाँ पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था,
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी,
0: उनको।
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है, अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए,
1: वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, नहीं करता।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी, जी।
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार रहा।

0: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला। और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं। आपका भी जिक्र हुआ था,
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई? मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी।
0: अच्छा,
1: कभी
0: ये बात तो नहीं बताते,
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला, तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
0: जी।
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन, वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये

0: मुझे मिले, वो जो पहले वाले जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूं, वो जो स्कूल जहां पढ़ता था वहां जाता हूं अकेला और उसको फील करता हूं, मैं सिर्फ फील करता हूं खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा है। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीजे इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया, है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है।
1: हाँ।
0: फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई।

0: पहली जो फिल्म थी तुम्बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा, तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है, तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी,
0: ठीक है, तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है,
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए,
1: क्या बात,
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई,
1: क्या बात है, वाह,
0: रात कुछ ऐसे कटी है के सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई,
1: वाह क्या बात है,
0: रात कुछ ऐसे कटी है के सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे,
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद दिन में 11:05 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की स्वर प्रसारित होगा। आज के कलाकार हैं जगदीश प्रसाद कथक और उनके साथी। 1:05 पर हम लेकर आएंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन। आज की चर्चा का पहला विषय है सुविधा खर्च पर कितना खर्च आवश्यक है पहचाने। एक और चर्चा होगी अपने खातों की वित्तीय जांच भी समय समय पर है जरूरी, और बचत के साथ सुरक्षित निवेश भी करें।

श्रोताओं, आज देर में 2:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। 2:30 पर शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के लिए हम दिन में 2:25 पर हमारे अधिकृत फेसबुक पेज पर एक पोस्ट प्रदर्शित करेंगे। आपको उसमें कमेंट के माध्यम से अपनी पसंद को भेजनी है अपने गांव और शहर के नाम के साथ। सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी 5:00 युववाणी के साथ। आज की चर्चा का विषय रहेगा कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की जयंती पर भी चर्चा होगी, साथ ही वीवी गिरी की पुण्यतिथि इस विषय पर भी बातचीत होगी। कॉर्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है इस विषय पर भी वो सबकी जानकारी देंगे, साथ ही डिजिटल दुनिया में सकारात्मक पहचान कैसे बनाएंगे, इन तमाम विषयों पर युवाणी कार्यक्रम।

शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा खेती और गृहस्थी। चर्चा होगी किसान भाई कृषि मेलों से लाभ उठाएं। एक और चर्चा होगी पशुओं में टीकाकरण का महत्व। खेती किसानी और संचार क्रांति विषय पर भी बातचीत होगी। बाजार भाव, MSP, मौसम की जानकारी भी किसान भाइयों तक पहुंचाई जाएगी। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। हम आपको सुनवाएंगे

आएंगी रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम। 10 बजे हमारे केंद्र से आप सुन पाएंगे शास्त्रीय संगीत और 10:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में श्रोता सुन रही थी मधुमती फिल्म का गाना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस समय श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।

मुकेश की आवाज़ को आप सुन रही थी फिल्म दीवाना में। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चोरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कुंज बिहारी के साथ।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाज़ को, फिल्म का नाम चोरी चोरी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी चोरू से जारी है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे

0: आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है चित्रपट संगीत में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चोरू का प्रसारण।

आशा भोसले किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ताना में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से चित्रपट संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ आप सुन रहे थे परवरिश फिल्म में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत जारी है, लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोता भी सुन रहे थे अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गाना किशोर कुमार महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज़।

आप सुन रहे थे धर्मवीर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ का ये गाना। इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्ब सर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्ब सर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है जी। चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है ना, ये बड़ी अजीब बात।

0: जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के

0: रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
0: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय

0: सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
0: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
0: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
0: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
0: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के

0: को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोता अभी सुन रही थी NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उमंग कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। श्रोताओं अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्पर। आज के कलाकार हैं जगदीश प्रसाद कथक।

श्रोता अभी सुन रहे थे जगदीश प्रसाद कथक और उनके साथियों की आवाज़ों में लोक रचनाएं। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। साथ

0: पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1500 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जेडीए नगर निगम स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से करेंगे। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से लोगों की यात्रा आसान हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। बूंदी शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ पैलेस में शहनाई वादन से हुई। इसके बाद गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने बताया कि बूंदी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानी जी की बावड़ी, सुख महल और 84 खंभों की छतरी पर पर्यटनों और आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदीवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने बूंदी को राजस्थान की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गौरव का अनूठा प्रतीक बताया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थी और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर में आज सुबह कई जगह हल्की बरसात हुई। भरतपुर में भी सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगन ले हाजिर हूँ मैं इंदु दोहणो। कार्यक्रम के मायने घने मानशु थारो स्वागत है और करा मोकला मोकला राम राम। भेणो आपने कार्यक्रम के मायने आपने घर परिवार की बात करा या कोई विशेष दिन हो अभी के बारे में बात करा और अभी ओ सावांगो टेम चल रहे है तो आप बातचीत कर सा। शुरुआत में एक ओ लोक भजन सुनार थारो करावा मनोरंजन।

फिर सुस्वागत है कार्यक्रम में। अब आप बात करा सुविधा खर्च पर कितना खर्च आवश्यक है। बहनों सुविधा खर्च वो अतिरिक्त खर्च हो है जो आप कई बार ऑनलाइन सेवा के माध्यम से करा, जी टिकट बुक करनी है, बिल भुगतान के समय आपने मूल कीमत के अलावा थोड़ो अलावा चार्ज दियो जावे, तो भी के लिए भी सुविधा के लिए आपनों खुद को ऑनलाइन जब भी करा तो भी को ध्यान देवा। आप कई तरीके से पहचान सका हाँ बहनों के सुविधा शुल्क मूल उत्पाद या सेवा की कीमत में शामिल न हो करके कई बार आप देवा तो आप जिकी मूल राशि देवा भी के ऊपर आपने जहाँ 100 रुपया पर आप 100 रुपया को बिल भुगतान करो है और बी के ऊपर आपने 2 रुपया या 3 रुपया अलावा खर्च करना पड़े है, तो ये चीज़ के लिए आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। और कई बार बहनों आप बिल देते टाइम आपने भेरो कौन पड़े, तो इसके लिए आपने जागरूक होना जरूरी है कि आज आपनी सरकार आपने इतनी सुविधाएं जोड़ रखे हैं और बी सुविधा के लिए अगर आप जागरूक रह के ध्यान देवा तो आपनो जो पिसो है वो हर जगह अपने यहाँ पतो रहे के हर पिसो आपनों काम पर लागो है। और कई बार आप गलती कर बैठा का अपन खुद ने ध्यान नहीं होवे और आपनी जिकी राशि है वह चुका देवा और जो अतिरिक्त शुल्क है वो आपनों ज़्यादा लाग जावे, तो भी के बाद के मायना अपने मन में पछताव होवे कि अपना पिसा है जिका ज़्यादा लाग गया। तो बहनों यल की समस्या से बचने के लिए आपने जागरूक रहना बहुत

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मैडम, फिर स्वागत है कार्यक्रम में। अब आप बात करा, अपने खातों की वित्तीय जांच भी समय समय पर जरूरी है। मैडम, आपने खाता की समय समय पर आपने जांच करवाना बहुत जरूरी है। इसे आप अपने पैसा ने सुरक्षित रखने में, अनावश्यक खर्च कम करने में और आपने जिसका भविष्य का लक्ष्य है, जी घर खरीदना है, रिटायरमेंट के समय पर है, या कई बार आपने आपातकाल को समय भी आ जावे का, आपने कोई भी अचानक कोई परिस्थिति आ जावे आपने सामने, तो बने प्राप्त करने में मदद मिले है। आपने बजट की समीक्षा करने में भी मदद मिले कि आप एक महीने में कितो खर्च करो और भी की तुलना करके आप सही बचत ने प्राप्त कर सका। हाँ, बैंक और क्रेडिट कार्ड की जांच भी आप एक माध्यम से कर सका। हाँ, के समय समय पर आपने अपने खाता ने संभालना चाहिए और आप कितना पैसा बचाया। हाँ, और भी के लक्ष्य को भी आपनों मूल्यांकन हो जावे के बचत करी गई राशि आपने खाते में कितनी है। कई बार भेनो आपने सामने आपात स्थिति आ जावे के आपने अचानक पैसा की जरूरत पड़े और भी टेम आपने खाते में जी आप 3 महीना से 6 महीना को लेकर के खर्चो पूर्ण कर सका। हाँ, एल की स्थिति आपने सामने आ जावे तो आपने बेरो पड़ जावे कि आप समय समय पर अपने खाते ने संभाल तो रहा तो वही कितना पैसा है और कद आपने बड़ी जरूरत पड़ सके है। और इसके लिए मैडम एक बात अभी जरूरी है कि अगर आप अपने खाते ने संभाल करा समय समय पर, तो आप अपनी बीमा पॉलिसी कोई भी करवाई रही है तो भी के मायने नॉमिनी को नाम भी सही अपडेट है या को नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आपने टेम टेम पर आपने खाता ने संभालना चाहिए। मैडम कई बार आप देखा कि छोटी सी बचत की शुरुआत करा और भी से आपनों जो भविष्य है वो सुरक्षित करा आप, और छोटी छोटी बचत ही जब बड़ी बन जावे तो अपने मन में एक तरह से शांति मिले और आ छोटी छोटी जिकी बचत है वह अपने भविष्य ने सुरक्षित और समर्थ बनावे। जिया भेनो आपने घर के मायने आप खर्चो करा, बच्चा के शिक्षा के लिए आपने पिसो चाहिए, और अगर आप 2 पैसा बचा करके आपने कने छोटी सी राशि अगर बड़ी बन जावे तो भेनो

परिवार के मायने आपां देखा कि अपने परिवार में कई अपना जगह बंदा हुए वह भाई वांगन नौकरी पीछे वो कोई काम धंधो नहीं हुए, तो आपा कोई छोटो या बड़ो व्यापार भी कर सका। हाँ, अगर आपा थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाया, हाँ, और आपने करने बचत की जगह राशि इकट्ठी है, तो आपने एक बड़ो व्यापार करने की शक्ति भी देवे। और कोई भी लक्ष्य तक आपने पहुंचने के लिए छोटे छोटो लक्ष्य बनो जरूर बनाना पड़े, और इसके लिए जरूरी है कि हर महीने कुछ न कुछ पैसा बचावा। आ एक छोटी सी आदत है, लेकिन लंबे समय के बाद में आ बड़ो रूप ले लेवे, और आपने प्रेरणा देवे कि छोटी छोटो जो को लक्ष्य आप लेके चलिया बिसे आपने एक लंबो लक्ष्य हासिल हो गए, तो आप एक तरह से मन में उत्साहित हो, आपने एक अच्छी प्रेरणा मिले, और बड़े लक्ष्य गोज को सफर है बिना बनाने में भी मदद करे। इसके लिए बहनों जरूरी है कि आप अपनो जो मासिक खर्च करा बिसे आपने 2 पैसा बचाना बहुत जरूरी है, और निर्धारित समय पर अगर आप पैसा नहीं बचाया, हाँ, तो आगे जा करके आपनों जो को प्रभाव बजट है वो प्रभावित होते तो जावे, और आपने फिर अचानक बहुत बड़ो कर्जो लेना पड़े। जब आपने बड़ी आवश्यकता पड़े, आपने कन्ने 2 पैसा नहीं बचाएड़ा है, तो कहने को मतलब वही है कि बहनों आप अपनों मानसिक तरीके से भी आपनों संतुलन है जो को गड़बड़ा जावे, और भी कसा कसा गए आपा जगह उधार पैसा लेवा और बस समय पर नहीं चुका पावा, तो आपने मन है जिसको अशांत रहे, आपने बच्चा ने भी चीज की जिसकी सजा है बा मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बचत बच्चा ने करना भी सिखावा, समय समय पर आप अपने खाता ने संभालता रहवा, तो आपने भावी जीवन में कोई दिक्कत को नहीं आवे। बहनों बातचीत तो आप और भी कर सा, एक बार फिर करा दें थारो मनोरंजन।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
4: फिर स्वागत है वेणु कार्यक्रम में। अब आप बात करा के बचत के सागे सुरक्षित निवेश भी करा। भेणो आप बात करी ही के समय समय पर अपना खाता संभाला आपा और शुरुआत से ही बचत करा। बचत आपा ने एक तरह से सुरक्षित निवेश होवे है। एक बहुत ही गहरो विषय है के आप अगर व्यवहारिक अनुभव के आधार पर बात करा तो बचत और निवेश पैसा सीधा तौर पर अपन खुशी को नहीं देवे, लेकिन आप देखा के अपनी खुशहाली को राज हुआ है के छोटे छोटी सी बचत आप निवेश की राशि इकट्ठी करी है तो तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आपने आगे बढ़ा हुआ है और निवेश करी गई राशि आपने एक तरह से आधार स्तंभ के रूप में हुआ है। पैसा निवेश करा हाँ तो भी सभी आप कोई भी आपनो जो काम है वो आसानी से कर सका। हाँ पैसो एक ऐसी चीज है जो अपनी बुनियादी जरूरतान पूरी करे, जिया रोटी कपड़ा और मकान, और इसे आप मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहा। हाँ एक सागे सागे अगर आप छोटे से लक्ष्य बड़ो निवेश करो है तो अपना अनपेक्षित जगह खर्चा हुए हैं, जिया चिकित्सा पर, शिक्षा पर, या कई बार भेणो आपने धंधे में भी दिक्कत आ जावे का आपनो धंधो भी छूट जावे कई बार और आपने कने भी टेम के ऊपर कोई धंधो को नहीं हुआ। अगर 2 पैसा आप बचाए हाँ तो 20 पैसे से आपनो और कोई रोजगार शुरू कर सका। हाँ तो कहने को मतलब वही है बहनों के छोटे से लक्ष्य शुरुआत करके आपने बहुत बड़ी जिकी राशि है वह निवेश करनी चाहिए। अगर बहनों आप अच्छा पैसा बचा रखे हाँ और आपने कने घर को जो काम काज है वो सही तरीके से चल रहे है और आप पुराने टाइम से ही अपनी बचत की राशि शुरू कर दी और आज आपने कने चोखा पीसा ही तो बहनों कोई भी आपने बच्चा की शिक्षा है, आपनों घर खरीदनो है, या कई बार बहनों आपने कोई आपात स्थिति आ जावे तो भी के दौरान आप पैसा से आपनो काम कर लेवा। आपने कोई भी मन के मायने चिंता को नहीं होवे और कई बार बहनों आपने बहना कामकाजी होवे और घर के मायने कोई कार्यक्रम होवे और भी टेम बाने टेम को मिल रहे कोई भी काम करने के मायने तो आप दूसरे की मदद भी ले सका। हाँ अगर आपने 2 पैसा बचाया हाँ तो आपने घर की साफ सफाई है, खानो बनानो है, या और कोई आपने घर के मायने काम करवानो है भी के मायने आप दूसरा की मदद भी ले सका। हाँ विशु भी कार्यक्रम के मायने बहनों आपने खुद ने टेम मिल जावे, आपने परिवार पर वो टेम आप खर्च कर सका। हाँ और आपने एक तरह से बचत करी गई राशियों आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले है।

देखा भी हाँ कई घर के मायने के बच्चा है बेबी शुरुआत के मायने देखा कि कितना समझदार हो है पढ़ने के सागे सागे बांगी आदत के मायने कई घर के मायने आप जाने को मौको मिले या अपने परिवार के मायने भी आप देखा हाँ कि छोटा सा बच्चा ही वह पैसा खर्च करने के मायने बहुत कंजूसी करें यानी कि हर टाइम बांगे दिमाग में ओ चाल तो रहे कि आप फालतू पैसा खर्च नहीं करा तो वह एक बांगी बहुत बड़ी समझदारी है वो एक बांगे घर परिवार के वातावरण को ही फर्क है। और कई बार बहनों आप देखा देखी कि होड के मायने अगर कोई घर के मायने गाड़ी खरीदी गई है आपने पड़ोसी के घर के मायने कोई फर्नीचर आयो है या और कोई बहुत अच्छा मकान बनाया गया है तो भी के दौरान बहनों आपा ने बाकी देखा देखी कदे ही नहीं करनी चाहिए। आपने घर के मायने जिसु आपनी राशि बचाई गई है या जीता पिसा आपने घर के मायने हैं तो भी से आपा आपनो घर परिवार को जिया काम चल सके भी के अनुसार ही आपने काम करना चाहिए भी से किए का आपनी जिकी आर्थिक स्थिति है बा डगमगावे को नहीं। और आप पिसा आपने बच्चा ने भी बचाने की आदत घाला तो बहनों आगे जा करके वह भी जब पढ़ाई के दौरान बना जब जरूरत पड़े तो दो पिसा बचाएड़ा आप बच्चा की इच्छा भी पूरी कर सका हाँ। कई बार बहनों आपने जरूरत पड़े छोटी मोटी और आप लेन देन करता रहा और आपने पिसा है जिका लेन देन करेड़ा बहुत सारा हो गया और बी टाइम आपने घर के खर्च में से आप निकाल को नहीं पा रहा तो बी टाइम आपनों जो को मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा जावे तो वो एक अनुभव होए बहनों कि अपना बड़ा बुजुर्ग भी आपने इस चीज की शिक्षा देवे क्योंकि बांके हाथों से बहुत सारा काम निकल गया है और वे खर्चों के हिसाब से करियो वह चीज आपने सिखानी चाहें। और घर के मायने आपने एक बार तो वह चीज बुरी लग गया कि कोई भी काम करा तो बिग मायने आपने सागे टोका टपकी हो रही है लेकिन बाकी बात अनुभव के आधार पर आप जानने की कोशिश करा तो बहनों बहुत बढ़िया है पैसा आपने बचाना चाहिए जद ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सका हाँ। समझदारी से अगर आप निवेश करियो है तो हर जगह आपने खर्च करने में भी दिक्कत को नहीं आवे निश्चित रूप से आप अपने जीवन की गुणवत्ता है भी बेहद बना करके आपने खुशियां है जिकी प्राप्त कर सका हाँ। और अगर आप अपनी खुशी ने बढ़ानो चाहवा तो कम आय के मायने भी आप छोटी सी बचत की शुरुआत जरूर करा बहनों और आपने आवश्यकता के समय पिसो लेनो भी पड़े तो वो टेम पर आप चुक तो भी करा ताकि अपना आगे का कोई भी काम प्रभावित को नहीं हो। तो बहनों बातचीत तो आप और भी कर सा एक बार फिर करा दें थारो मनोरंजन।

और शरीर के मायने आपने कई बार कोई भी चीज की एपच हो जावे, कोई चीज खा ली और वह पचरी को नहीं, तो भेणो भी के दौरान आपने नींबू पानी को सेवन करना चाहिए। ORS को घोल है वो आपने पानी में मिला करके पीना चाहिए। और कई बार भेणो आपने बारे कोई भी काम के लिए जावा और शरीर में चक्कर आना या लगातार आपने कोई जुखाम वगैरह है तो भी को आपने तुरंत इलाज लेना चाहिए। ई गर्मी को मौसम याल को है कि ई गमाइन अगर आप थोड़ा सो ध्यान नहीं देवा तो आप बीमार होके बैठ जावा। तो कहने को मतलब वही है कि खान पान पर ध्यान देसा और आपने पहनावे पर ध्यान देवा तो ई गर्मी के झुका जितनी भी दिक्कत है बस वो आपा बच सका। हाँ, कई बार देखा कि घर आपा कोई भी भोजन बनायो है और वो आपने अच्छो कौन लाग रहे हो और आपन नहीं खावा तो भेणो बिसु भी आपने शरीर में एक तरह से कमजोरी आ जावे। आप दिनों दा पूरा खा तो छा दही को सेवन करा और घर के मायने ई मौसम की जकी सब्जी है वे भी लेकर के आवा। तो अगर खान पान को ध्यान रख सा तो ई मौसम की जितनी भी बीमारियां हैं बासु आपा बच सका। हाँ, और अब जहाँ बारिश हो जावे और बी के दौरान भेणो आपा कूलर चलावा तो रात ने जब ठंड लागे तो कूलर का आगा पास सो के फिर लेट तक जब ठंड पड़े भी टाइम कूलर ने आपा बंद नहीं करा तो जुखाम भी हो जावे, बच्चा के भी जुखाम बुखार हो जा। तो अपने छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। घर के मायना अपना बड़ा बुजुर्ग है वहां पर भी अपन ध्यान देना चाहिए ताकि वे भी बांको भी स्वास्थ्य है जो सही रहे। और ये गर्मी के मौसम में जब खेत में जावा तो भेणो पसीनो अपने शरीर में आ जावे तो अचानक जा करके आपने ठंडो पानी नहीं पीना चाहिए। आप बैठ करके थोड़ी देर आराम करा और फिर धीरे धीरे आपने पानी पीना चाहिए, इसे भी आपने जुखाम लाग जावे। और ये मौसम के मायने जुखाम के लिए आप घरेलू उपाय भी कर सका। हाँ, नींबू की चाय बना के पी ले रात में सोते वक्त, या फिर 2-3 दिन लगातार आपन छींक आ रही है या आपनों स्वास्थ्य प्रभावित है तो आपने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। भेणो अब फिर चलता चलता एक बार करा दें थारो मनोरंजन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में

0: हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर

0: कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित

0: निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 2:30 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश।

सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इंस्टेंट फरमाइश की, और पहला जो कमेंट है वो हमारे श्रोता हमें भेज चुके हैं। इनका नाम है संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल, कार्तिक सोनग्रा और इनका पूरा सोनग्रा परिवार। ददरेवा से इनके साथ हैं गंगा शिंपा, उषा, अवनी, अक्षय, हाजिम कुरैसी, मेनु सर्विकान, सदाशय से अंबिका भाटी

0: न्यांगली राजगढ़ से संदीप स्वामी, रामसरा चूरू से सचिन चौहान और शिवधोरा रतनगढ़ से प्रकाश राणा। आप सभी श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं रिफ्यूजी फिल्म के गाने के साथ, और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिवादन कि आप लगातार हमें इस कार्यक्रम में कमेंट भेजते रहे। श्रोताओं से अनुरोध है कि आप एक बार में यानी इस कार्यक्रम के लिए आज हमें एक ही कमेंट भेजें, बार बार कमेंट ना भेजें। आप सभी के नाम और आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

श्रोताओं, इसी गीत में कुछ और नाम हम शामिल कर लेते हैं। ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ से लिखते हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं। विष्णु मिस्किन, रितिका, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आप सभी लिखते हैं भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। ये कमेंट हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं, आप लिख रहे हैं, इनका नाम हम पढ़ रहे हैं। गांव नाई वाला, जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा।

श्रोताओं, आपने सुना इंस्टेंट फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हैं बाबू फिल्म से, और इसके लिए हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट आने के सिलसिले शुरू हैं। फरमाइश भेजी है हमारे श्रोता, लिख रही हैं नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। और ये जो हमारे श्रोता हैं, प्रशांत कुमार के नाम से इनकी आईडी है, इनका कमेंट भी हमें मिल गया है। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से लिखते हैं मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बापू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से हमारे श्रोता हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाटा। आप श्रोता हैं बिसाऊ कस्बे से लिख रहे हैं मनोज सहल, भारद्वाज, मनोज सेन और मुकेश सिंह। ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक, हर्षित शर्मा का। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप इतने रियल टाइम पर हमें सुन रहे हैं और अपनी इंस्टेंट फरमाइश को इंस्टेंट ही सुन रहे हैं।

अगले गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं और प्रेम गीत फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं और इसके लिए मिली जुली फरमाइश आप सबकी। आप लिखते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां लिखते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत मयंक भाटिया, आप श्रोता हैं मोरटका माफी जिला खंडवा से, किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम देवी, किशन भावना और ये हमारे श्रोता हैं गांव कलाना राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश कड़वासरा और युधव कड़वासरा। आप श्रोता हैं तालुका निवासा खुपटी से लिखते हैं बंडू लोहार, माया शिवांश, चंद्रकला और सरिता मोदी है इनके नाम से भी कमेंट मिला है। नाभा जिला पटियाला से लिखते हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, ये हमारे श्रोता हैं। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज, रितिका खुरवाल, भानु प्रकाश। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे पास कमेंट मिला है धर्मेंद्र छिपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार का, आप श्रोता हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिबला अलेजा, ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना का ग्राम पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद से, आप श्रोता लिख रहे हैं ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकल, रतनमाला ओम कुमार और आरती कुमारी, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, सौरभ डोडी और इनके तमाम साथी। श्रोताओं आपसे वादा है कि आप हमें तय समय तक जो भी कमेंट भेजेंगे उनको हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप लगातार स्पीड जारी रखिए और इसी स्पीड के साथ हम आपके कमेंट्स को यानी आपके नाम को आपकी फरमाइश को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से इंस्टेंट फरमाइश कुंज बिहारी के साथ।

श्रोताओं, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा गीत, प्रेम गीत फिल्म का ये गीत आपने सुना। आकाशवाणी चूरू से आप सुन रहे हैं इंस्टेंट फरमाइश। कमेंट लगातार मिल रही हैं, अगली पसंद हम ले रहे हैं रंगोली फिल्म से। मिली जुली फरमाइश आप सबकी मिली है हमें। आप लिखते हैं बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। जी के परमार लिख रहे हैं गांधीनगर गुजरात से। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी लिखते हैं आकली दीवान एमपी से। ये हमारे श्रोता हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। आप श्रोता नरेंद्र चौहान हैं, इनके नाम से हमें ये कमेंट मिला है। हितेंद्र दास लिख रहे हैं स्टेट आसाम से। सदर बाजार करावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। श्रोता लिख रहे हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कर रहे हैं आपकी पसंद को पूरा। आकाशवाणी चूरू के मंच से आप सुन रहे हैं इंस्टेंट फरमाइश और ये ऐसा कार्यक्रम है कि आप जब कमेंट के माध्यम से अपनी पसंद भेजते हैं तो उसके कुछ सेकेंड्स यानी कुछ मिनट्स के बाद ही आपका नाम शामिल हो जाता है।

जी हाँ, छोटी सी दुनिया तो हो गई है इस जमाने में, और ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। और अब अगला गीत हम ले रहे हैं, फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने। गाने के लिए मिली जुली फरमाइश आप सबकी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन से लिखते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू। आप श्रोता हैं मोहन पवार, दामिनी पवार लिखते हैं केवलाड़ी छिंदवाड़ा से, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, और ये हमारे श्रोता हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, इंद्राज नाम से ये जो आईडी है इन्होंने भी अपना कमेंट भेजा है। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा, कस्बा उगेती बदायूं से लिखते हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस, प्रशांत कुमार और कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। ये हमारे श्रोता हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन। आप श्रोता हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। आप श्रोता लिख रहे हैं कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रेश और नूरू मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना, गांव बेरा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं प्रहलाद सिंह वर्मा, मालती, आस्था और वैदही। तमाम श्रोताओं की पसंद को आज हम पूरा कर रहे हैं और सभी श्रोताओं के हम आभारी हैं कि श्रोता हमें याद रख के लगातार अपनी पसंद भेजते रहे हैं।

श्रोताओं, इंस्टेंट फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश के रूप में हम शामिल कर रहे हैं मोहरा फिल्म का गीत। फरमाइश आप सबकी। मोहम्मद सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कलां झुंझुनू से लिखते हैं। महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदासर से, राजा नंदवाणी, रजत रोहित, केशव मुकुल, मनीष सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी नई सड़क चूरू से लिखते हैं। जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल और इनके तमाम श्रोता साथी हैं गुदड़ी बाजार चूरू से हमें लिख रहे हैं। राकेश कुमार दूधवा मीठा चूरू से, अरविंद खाड़िया लदड़िया चूरू से, निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी चेतन आप सभी लिखते हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। ये कमेंट हमें मिला है जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी का। और आप श्रोता हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे और दीपक ये हमारे श्रोता हैं। बेला डेला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा प्रमिला और तमाम इनके परिवार के सदस्य हैं।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। आप सभी के कमेंट्स को हमने शामिल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल अनुमति दें कुंज बिहारी को, नमस्कार।

श्रोता भी सुन रही थी कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं, FM 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 एफएम, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी, और आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त शालिनी को। तो प्रोग्राम में शामिल तमाम श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार।

जी दोस्तों, प्रोग्राम में शुरू हो चुका है युवाणी, जहां हम लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए कुछ खास सेगमेंट, जिसमें आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है विज्ञान धारा। जी हाँ दोस्तों, इस स्पेशल सेगमेंट में हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो सीधा हमारे युवाओं से जुड़े हुए होते हैं, हमारी तकनीक से जुड़े हुए होते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। और आज भी हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर युवा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के खास सेगमेंट में हम बात करेंगे कि डिजिटल जो दुनिया है उसमें हम अपनी पॉजिटिव पहचान यानी कि सकारात्मक पहचान कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। आज हम जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिस तरह से हम कमेंट करते हैं, जो तस्वीरें या जो विचार है वो हम साझा करते हैं, वही हमारी डिजिटल पहचान बनते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम अपनी डिजिटल पहचान को सही दिशा में बना रहे हैं? क्या इंटरनेट पर हमारा जो व्यक्तित्व है वो सकारात्मक, जिम्मेदार और प्रेरणादायक दिखता है? या हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिसका जो असर है वो हमारे भविष्य पर पड़ सकता है? और क्योंकि इसी टॉपिक पर अगर हम बात करें कि कैसे जो युवा है वो अपनी डिजिटल पहचान को और भी ज़्यादा मजबूत, सुरक्षित और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कि डिजिटल पहचान होती क्या है। तो डिजिटल पहचान का मतलब है इंटरनेट पर आपकी मौजूदगी, आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी पोस्ट, आपकी लाइक, शेयर, टिप्पणियां, आपका ऑनलाइन व्यवहार, सब मिलकर आपकी एक डिजिटल पहचान बनाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आप क्या पोस्ट करते हैं, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ये सब लोग देखते हैं और उसी से आपके बारे में राय बनती है। तो जिस तरीके से भी हम अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेश करते हैं, अपनी जो भी डिजिटल पहचान हम बनाते हैं, वही हमारी एक तरीके की सोसाइटी में पहचान बन जाती है। तो आज कुछ कंपनियां जो है वो भी इसी डिजिटल प्रोफाइल को देखकर है, पहले उम्मीदवार की प्रोफाइल को देखती है, उसके बाद में ही उसको नौकरी देती है। इसीलिए जो डिजिटल पहचान है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि आपके भविष्य का आईना भी है। अब हमने बात की कि हमारी डिजिटल पहचान क्या होती है, अब हम जाने कि डिजिटल जो सकारात्मक डिजिटल पहचान क्यों जरूरी होती है। अब सवाल उठता है कि आज की पूरी जो दुनिया है वो पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर जो सामाजिक जीवन, हर जगह आपकी ऑनलाइन छवि मायने रखती है। ये छवि आपके करियर के लिए जरूरी है,

समाज में सम्मान के लिए जरूरी है, अवसरों की संभावनाओं को देखने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अच्छी डिजिटल पहचान आपको नए अवसर दिला सकती है, जैसे इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और नेटवर्किंग। साथ ही साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। जब आप जिम्मेदारी से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और इसी चीज़ों को अगर हम पॉजिटिवली बनाए रखें, यानी कि हमारी सकारात्मक जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर जो युवा है अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे बिना सोचे समझे पोस्ट करना, ऐसी चीज़ें पोस्ट करना जिससे गलत संदेश जो है वो पहुंचता है, फेक न्यूज़ शेयर करना, उन जो फेक न्यूज़ है उनको बिना जांचे परखे किसी भी खबर को आगे बढ़ा देना भी एक बड़ी गलती मानी जा सकती है। और साथ ही साथ किसी भी पोस्ट पर अपमानजनक या जो नकारात्मक टिप्पणी है उनका करना उनकी छवि को खराब कर सकता है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें अपनी डिजिटल पहचान को बनाए रखने के लिए, उसको पॉजिटिवली सोशल मीडिया पर बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम अब ज़रूर बात करेंगे कि सकारात्मक पहचान कैसे बनाए रखें, कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, और साथ ही साथ डिजिटल दुनिया में हमारी क्या जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ भविष्य और डिजिटल पहचान हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चलते हैं आपको छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
8: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
9: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
11: जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी खास सेगमेंट विज्ञान धारा में कि डिजिटल दुनिया में सकारात्मक पहचान जो है वो युवा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया आज जो युवाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन इसका जो यूज है वो जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। किसी भी पोस्ट, फोटो या वीडियो को साझा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका क्या इफेक्ट जो है होगा। कई बार मजाक में की गई टिप्पणी भी गलत संदेश जो है वो दे सकती है। तो युवाओं को चाहिए कि वो सकारात्मक और जो प्रेरणादायक सामग्री है वही साझा करें,

अपमानजनक या जो भड़काऊ पोस्ट है उनसे बचें। साथ ही साथ किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता को जांच लें। साथ ही साथ दूसरों के प्रति सम्मानजनक भाषा का उपयोग करें, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, इंटरनेट पर डाली गई सामग्री लंबे समय तक मौजूद रह सकती है, इसीलिए हर पोस्ट जो है वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जिस तरीके से हमारे वास्तविक जीवन में शिष्टाचार जरूरी है, उसी प्रकार डिजिटल जो दुनिया है उसमें भी अच्छे व्यवहार का महत्व होता है। और जब भी हम डिजिटल शिष्टाचार जो है वो न केवल आपकी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण भी तैयार करता है। जिस तरीके से आप ऑनलाइन जो है किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, और इन सब चीज़ों से मिलाकर ही आपकी एक डिजिटल शिष्टाचार वाली सकारात्मक पहचान निर्मित होती है। साथ ही साथ डिजिटल दोस्तों जो प्लेटफॉर्म है वो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने का भी बेहतरीन मंच है। अगर आप लेखन में रुचि रखते हैं तो ब्लॉग लिख सकते हैं। यदि आपको संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी या किसी अन्य कला में रुचि है तो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज हजारों युवा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल जरिए के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो अपनी रुचियों और कौशल को सकारात्मक तरीके से पेश करना आपकी डिजिटल पहचान को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ इसके साथ अपनी जो गोपनीयता है और सुरक्षा है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि सकारात्मक डिजिटल पहचान बनाने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। अक्सर हम अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे साइबर अपराधियों को अवसर मिल सकता है। तो युवाओं को कुछ ऐसी बातें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए जो उनके सकारात्मक डिजिटल पहचान बनाने के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड का यूज करें, दो स्तरीय सुरक्षा को अपनाएं, बैंकिंग या जो व्यक्तिगत जानकारी है वो साझा करने से बचें, जो भी संदिग्ध लिंक होते हैं उन पे क्लिक ना करें, और अपनी गोपनीयता सेटिंग की नियमित जांच करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम सुरक्षित डिजिटल व्यवहार जो है वो अपना सकते हैं। अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा दोनों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ऑनलाइन समय जो है उसका भी संतुलित उपयोग जो है वो हमें आना चाहिए। कितना जो स्क्रीन टाइम है वो हमारे लिए उचित रहता है उसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि संतुलित जीवन शैली जो है वो सकारात्मक व्यक्तित्व का आधार होती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों कि डिजिटल फुटप्रिंट है वो क्या होता है, तो डिजिटल दुनिया में हमारे द्वारा जो भी अधिकांश कार्य किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। इसे ही हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। आज की गई एक पोस्ट वर्षों बाद भी देखी जा सकती है, इसलिए हर युवा को खुद से ये सवाल जो है वो ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी लोग इस पोस्ट को देखें। अगर उसका जवाब नहीं है तो उस सामग्री को साझा करने से बचना बेहतर है। तो उस तरीके से चीजों को समझना, उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करना, वो आप लोगों के हाथ में ही होता है। तो इस जिम्मेदारी के साथ आप अपनी जो डिजिटल सकारात्मक पहचान है वो बना सकते हैं, क्योंकि युवाओं की जो भूमिका है वो सबसे ज़रूरी होती है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और देश के करोड़ों युवा डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि युवा जिम्मेदारी, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो वो न केवल अपनी पहचान मजबूत बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। डिजिटल दुनिया अवसरों से भरी हुई है, आवश्यकता केवल सही दिशा और जिम्मेदार उपयोग की है। दोस्तों और भी बहुत सारी बातें करेंगे सेगमेंट में, फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है विज्ञान धारा। दोस्तों अगर हम बात करें आज एक महत्वपूर्ण और आधुनिक वैश्विक विषय पर चर्चा करें तो आज हम बात करें कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। तो आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की जो जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है तब देशों द्वारा अपनाई जा रही नीतियां भी बदल रही है। इन्हीं नीतियों में से एक है कार्बन बॉर्डर टैक्स, जिसे कई जगह कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो आखिर ये कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, इसका विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत जैसे देश के लिए कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है इसके बारे में बात करें तो ये एक ऐसा टैक्स या शुल्क है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो दूसरे देशों

में बनते हैं, लेकिन उनके निर्माण में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। अगर सरल शब्दों में समझे तो जब कोई देश ये नियम बनाता है कि उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा, तो उसके देश के उद्योग महंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे देशों के उद्योग बिना सख्त नियमों के सस्ते में वही सामान बना लेते हैं, तो प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो जाती है, और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाता है। अब ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम बात करें तो जब कंपनियां सख्त पर्यावरण नियमों से बचने के लिए दूसरे देशों में उत्पादन करती है, तो इसे कार्बन लीकेज कहते हैं। कार्बन लीकेज को रोकने के लिए इस तरीके का टैक्स लगाया जाता है। साथ ही साथ ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जिससे तापमान बढ़ता है और मौसम असंतुलित होता है, जिसके लिए पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस तरीके के टैक्स को लगाया जाता है। साथ ही साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच फेयर कंपटीशन को बनाए रखने के लिए और साफ सुथरी और कम कार्बन वाली तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाता है। और ये टैक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स एक तरह से कार्बन की कीमत तय करता है। मान लीजिए कि एक देश में स्टील बनाने में 1 टन उत्पादन पर 2 टन CO2 निकलता है और दूसरे देश में वही स्टील बिना सख्त नियमों के बनाया जाता है, तो आयात करने वाले देश उस स्टील पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर टैक्स लगाता है। इसका मतलब है कि जितना अधिक प्रदूषण उतना अधिक टैक्स। दोस्तों, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक प्रमुख नीति है जिसे यूरोपीय संघ ने लागू किया है। इसके तहत आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाया जाता है। शुरुआत में इसमें स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, बिजली और उर्वरक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। धीरे धीरे इसका जो दायरा है वो और भी बढ़ सकता है। अब बात करें कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत एक विकासशील देश है और यहाँ उद्योगों का बड़ा हिस्सा अभी भी ऊर्जा पर आधारित है। इस टैक्स का भारत पर प्रभाव दो तरीके से हम देख सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंपनियां जो है वो स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ेगी, साथ ही साथ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी निवेश बढ़ेगा। और अगर हम नकारात्मक प्रभाव देखें तो भारत के निर्यात जो है वो महंगे हो सकते हैं, स्टील, सीमेंट जैसे उद्योगों को नुकसान हो सकता है और छोटे उद्योगों पर बोझ बढ़ सकता है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ के बारे में हम निर्णय लेते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों हम देखते हैं, तो इसी तरीके से कार्बन बॉर्डर टैक्स के जो प्रभाव है वो भी भारत जैसे विकासशील देश पर दोनों तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। जैसा हम जानते हैं कि आज पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, असामान्य बारिश और सूखा बढ़ रहा है, तो इन सभी समस्याओं का मुख्य जो कारण है वो CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसे हैं। इसीलिए दुनिया अब लो कार्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। उद्योगों पर असर देखिए तो कार्बन बॉर्डर टैक्स से उद्योगों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट और रसायन उद्योगों को नई तकनीक अपनानी होगी और ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले पर निर्भरता कम होगी और नवीकरणीय ऊर्जा भी बढ़ेगी। निर्यात उद्योग में हम देखें तो निर्यात करने वाले देशों को अब कार्बन फुटप्रिंट का ध्यान रखना होगा, और वैश्विक राजनीति में इसकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में हम बात करें तो ये टैक्स सिर्फ पर्यावरण नीति नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक आर्थिक और राजनीतिक उपकरण भी बन चुका है। कुछ देश जो है इसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये घरेलू उद्योगों की रक्षा करता है लेकिन साथ ही वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित करता है। फायदे और चुनौतियों की दोस्तों हम बात करें तो फायदे इसके प्रदूषण में कमी होगी, हरित तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, जलवायु लक्ष्य हासिल करने में मदद होगी और उद्योगों में सुधार भी होगा। साथ ही अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो विकासशील देशों पर आर्थिक दबाव, व्यापार विवाद की संभावना और डेटा और मापन की जटिलता के साथ साथ छोटे उद्योगों की कठिनाई, तो जहां हम किसी भी चीज़ के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने उसकी चुनौतियाँ जो है वो भी देखने को मिलती है। तो भविष्य में इसकी क्या दिशा रहेगी, तो आने वाले समय में कार्बन

टैक्स और अधिक देशों में लागू हो सकता है। इसके लिए दुनिया को एक समान कार्बन मूल्य प्रणाली अपनानी होगी, तकनीकी सहयोग लेना होगा, वित्तीय सहायता और हरित निवेश की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है दोस्तों केवल एक टैक्स नहीं है बल्कि एक नई वैश्विक आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवस्था का हिस्सा है और ये हमें यही संदेश देता है कि आने वाला जो समय है वो हरित विकास का है। जो देश समय के साथ अपनी नीतियों और तकनीक को बदल लेंगे वही भविष्य में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में हमने बात की, और भी बातें करेंगे। फिलहाल ये चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानतम गायकों में से एक थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाई जाती है। दोस्तों, ये दिन भारतीय संगीत जगत के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने अपने अद्भुत गायन, संगीत साधना और शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी जयंती केवल एक महान कलाकार को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा और उसके मूल्यों को समझने का भी अवसर है। उन्होंने अपने संगीत से बहुत से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें प्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। पलुस्कर जी उस समय भारतीय संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित गुरुओं में गिने जाते थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने संगीत की शिक्षा अत्यंत कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ प्राप्त की। उन्होंने केवल रागों और सुरों का अभ्यास ही नहीं किया, बल्कि संगीत के भावात्मक पक्ष को भी गहराई से समझा। यही कारण था कि उनका गायन श्रोताओं के हृदय को सीधे स्पर्श करता था। जब वे मंच पर गाते थे तो केवल स्वर ही नहीं गूंजते थे, बल्कि भावनाएं भी जीवंत हो उठती थी। उनकी आवाज में शक्ति, माधुर्य और गहरी संवेदनशीलता का अद्भुत संगम था। पंडित जी मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के महान गायक थे। उन्होंने अनेक रागों की प्रस्तुति को लोकप्रिय बनाया और संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। वे संगीत को साधना और उपासना के रूप में देखते थे। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता भाव प्रधान प्रस्तुति थी। वे किसी भी रचना को गाते समय उसके शब्दों, अर्थ और भावों को पूरी तरह आत्मसात कर लेते थे। यही कारण था कि उनके भजन, देशभक्ति गीत और शास्त्रीय प्रस्तुतियां समान रूप से लोकप्रिय थी। कहा जाता है कि जब वे वंदे मातरम गाते थे तो श्रोताओं के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती थी। उनकी प्रस्तुति में ऐसा आकर्षण था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर केवल एक महान गायक ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षक और संगीतविद भी थे। उन्होंने संगीत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे चाहते थे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंचे और उनका संरक्षण हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी और उन्हें संगीत के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने विभिन्न संगीत संस्थानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। वहां उन्होंने संगीत शिक्षा को संगठित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता भी हासिल की। पंडित जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो, उन्होंने अपने जीवन में

अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण का परिणाम थी। आज के समय में जब संगीत की कई अनेक शैलियां लोकप्रिय हो रही है, तब भी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का योगदान उतना ही प्रासंगिक है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जयंती केवल एक स्मृति दिवस नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा को सम्मान देने का अवसर है। भारतीय संगीत जगत में उनका नाम सदैव सम्मान और गौरव के साथ लिया जाएगा। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और भारतीय संगीत के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं।

जी दोस्तों, बात करें आज के स्पेशल डे के बारे में, तो आज जो है वो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 24 जून को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है वो दुनिया भर में कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके योगदान को सम्मान देना है। कूटनीति का मतलब है कि दो देशों के बीच बातचीत, सहयोग और समझ के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना। पहले इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व अधिक था, लेकिन आज महिलाएं भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही है और विश्व स्तर पर शांति, विकास और सहयोग को मजबूत बना रही है। महिलाओं ने अपनी योग्यता, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के बल पर यह साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज कई देशों में महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में काम कर रही है। उनकी भागीदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी बनती है। भारत की बात करें तो हमारे देश की महिलाओं ने भी कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वे दुनिया के विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। और ये दिवस हमें याद दिलाता है कि कूटनीति केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि ये शांति, सहयोग और बेहतर भविष्य के निर्माण का भी माध्यम है। जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलते हैं, तब समाज और विश्व दोनों अधिक मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। तो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का संदेश भी देता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं, वो उनकी पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाई जाती है। इस अवसर पर देश उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान, श्रमिकों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष और उनके आदर्शों को याद करता है। वीवी गिरी को विशेष रूप से श्रमिकों और कामगारों के हितों के लिए किए गए कार्यों के कारण जाना जाता है। उन्होंने मजदूर संगठनों को मजबूत बनाने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए। वे भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका मानना था कि देश के विकास में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके हितों की सुरक्षा भी आवश्यक है। और सन 1967 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के पश्चात वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और सन 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग लिया और विजय प्राप्त कर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वीवी गिरी का जीवन सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय का समर्थन किया। श्रमिकों के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय जननेताओं में स्थान दिलाया। उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सम्मान उनके राष्ट्र और समाज के प्रति असाधारण योगदान की मान्यता थी। वीवी गिरी की पुण्यतिथि हमें उनके आदर्शों, संघर्षों और राष्ट्र सेवा की भावना को स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि ईमानदारी, परिश्रम और जनहित के प्रति समर्पण के माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया जा सकता है। भारत के इतिहास में वीवी गिरी का नाम एक ऐसे राष्ट्रपति

स्वतंत्रता सेनानी और श्रमिक नेता के रूप में सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें की। विज्ञान धारा आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट था। तो फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाजत दे आपकी दोस्त शालिनी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी सभा के शेष और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। 7 बजे कार्यक्रम होगा खेती और गृहस्थी, चर्चाएं होंगी किसान भाई कृषि सम्मेलनों में। एक बार फिर से सुनिए, किसान भाई कृषि मेलों से लाभ उठाएं, पशुओं में टीकाकरण का महत्व और खेती किसानी और संचार क्रांति।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:15 पर आनंद लीजिए कुछ लोक रचनाओं का कार्यक्रम लोक संगीत में। 9:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 बजे सुनिए शास्त्रीय संगीत और 10:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिए।

गुरुवार की पहली सभा में 6:10 पर कार्यक्रम चिंतन में सुनिए सकारात्मकता लाती है आभार की भावना। वंदना कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:15 पर। सुबह 6:45 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। सात बजकर 20 पर कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान में सुनिए अध्याय 9। सुबह 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार शुरू होगा। इसमें आप सुनेंगे चर्चाएं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जयंती, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, माँ है बच्चों की प्रथम पाठशाला। साथ ही आपके लिए भेंट वार्ता होगी फोटोग्राफी तब और अब, फोटो जर्नलिस्ट गिरधारी लाल सैनी से कुंजी बिहारी बिरमीवाला की बातचीत।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम, 9:10 पर देशगान, 9:15 पर मरुवाणी कार्यक्रम में सुनिए कुछ लोक रचनाएं लोक संगीत में। दिल से दिल तक फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। सुबह 10 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 12 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

महिला साथियों का कार्यक्रम होगा महिला जगत 1:05 से। चर्चाएं होंगी अपनी मासिक तनख्वाह को हिस्सों में खर्च करें, आपातकालीन निधि थोड़ी थोड़ी बचत हर रोज, गुजारे खर्च मुक्त दिन। दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब

देश प्रेमी फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: नव एकम द्वे अष्ट एकम शून्यम नव एकम एकम पंच नव अष्ट नव एकम द्वे अष्ट एकम शून्यम नव एकम शून्यम नव नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। शियोलद नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसम्पर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमन्त्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सेन्ट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामी दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं मेघालये आन्तरिक कर्णाटके ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिमबंगप्रदेशे सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ पंजाब हिमाचलप्रदेश उत्तराखण्ड जम्मूकश्मीर लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्रप्रदेशे बिहारे गुजराते झारखंडे केरलम राज्ये माहे प्रदेशे लक्षद्वीपे मध्यप्रदेशे महाराष्ट्रे ओडिशायां पश्चिमी उत्तरप्रदेशे च शनिवासरपर्यन्तं एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 दिनांकादारभ्य 14 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलम स्कॉटलैंड इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु

0: सप्त द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति। यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवादलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमा चानू करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलम्बिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् एकं शून्यम् इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं 5-0 पराजयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की जनजागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
2: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
1: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रहे हैं।
2: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
1: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बैठक के दौरान एचआरआरएल प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के

0: तहत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खिलौना बैंक के स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। श्री बागड़े ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने सीए इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के साथ 77 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
0: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संगराना 24 और 25 आरबी गांवों से इस ट्रेनिंग की शुरूआत हुई। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के RBM अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मॉनसून की बरसात कई जिलों को भिगो रही है। आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश में हीट वेव से राहत बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में अब तक 25 जिलों में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का

अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में

0: फसलों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार दो हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष की चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रूपये का सीड ग्रांट मिला। वहीं उपविजेताओं को 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉ करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद

0: कि विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतू सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंधड़ा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई न जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया जावेला। और देश माए नहना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुविधो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माए विकास रा 631 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाला कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। ई मौके राखी जिया कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री नालियां री सफाई सारू सुपर सकर मशीन, कचरो भेड़ो करण री नुवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन न रवाना कीनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माए जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बता रवाना कीना। श्री शर्मा पात्र लोगां ने जमीन रा हक वाला स्वामित्व कार्ड ई दीना। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर

0: और राकाम रे सर्वात करेला।
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां रो जिक्र करता था का मुख्यमंत्री कहो के ऐ शिविर जनतारी परेशानियां तुरंत आगीकरण रा जरिया बन रहा है।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर रे सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा कई नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास माथे अहलकारा सागे मीटिंग कर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम रे प्रगति रे बारा माए विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो के पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित हुएला। राज्य रा आंगनबाड़ी केंद्र माए 3-6 साल उम्र ताई रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताई चलाया जावन वाला ई अभियान रा तहत आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक खोलन सागे प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा ने पिछाण कर वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही माए कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दीरी जी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 माए लीरी जी CA इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा माए डोंबिवली रा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी ठौड़ माथे रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी भेवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग माए VDO परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दीरी जी। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ओ दिन साल 1967 माए पासपोर्ट कानून लागू हेवन री याद माए मनायो जावे है। इन रो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट, आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा माए पेश है समाचार कक्षों सालेहा गाजी री रपट।
2: पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र री पहुंच लगातार बधाई जा रही है जिनू नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ये आसानी पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही माए व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन माए विदेश मंत्री

0: एस जयशंकर बतायो कि देश में पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद में बढ़ोतरी रो दर्शाव करे है। माली साल 2025-26 में पासपोर्ट री तादाद बढ़कर 138 लाख वेगी। वे बतायो कि अब पासपोर्ट मुहैया करावन री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत बनावन रा काम माए प्रेरणा देवन वाली खास ताकत रा तौर काम कर रही है।
1: फौज री ओर श्रीगंगानगर जिला रा सरहदू लाग्योड़ा संगराना 24 और 25 आरबी गांव माए जनता माए जाग जगावन और सुरक्षा सहयोग मजबूत करन रा मकसद वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चियो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावन री प्रक्रिया बतावन और आपदारी भगत जनता और फौज बीच मदद बधावन रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून ताई चालेला। डीग जिलारा कामा हलका माए आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मारती नी। कार री फेंट माए आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर और पैदल जा रहा हा। जख्मी लोगा ने कामारा सरकारी अस्पताल माए भर्ती कराई चिया जठौ घना जख्मी 5 जना ने भरतपुर रा आरबीएम सफाखाना माए रेफर कर दिया चिया। कार चलावन वालों मौका फरार फेंक्यो। अरब मौसम प्रदेश का कई हलका माए चौमासाओं पहली री बिरखा वेवणु गर्मियों साता मिली है। जल संसाधन विभाग मिली जानकारी रे मुजब ई महीना माए हाल ताई राज्य रा 3 जिला माए बत्तो 3 माए सामान्य और 9 जिला माए सामान्य कम में बरसियो। मौसम विभाग आज ही 20 जिला माए गरज चमक सागे बरसात फेवन सारू चेतायो है। महकमा रे मुजब उदयपुर रे अलावा बाकी संभागा माए काली कठे कठे आंधी बारिश रा आसार है। 28 जिला माए येलो और श्रीगंगानगर चूरू और बीकानेर जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। ई बीचे आज हनुमानगढ़ माए दोपहरा पाछे मौसम पलट गयो। माणी खबर नवीस बतायो के वठे मोकलो धूलो उड्यो।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोट मूंग ग्वार मूंगफली बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी आकाशवाणी समाचार हनुमानगढ़।
1: आज बूंदी जिला रो 785 स्थापना दिवस मनाई चियो। ई मौके जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग री ओर भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। ऐतिहासिक गढ़ पैलेस माए शहनाई बजावन और गणेश पूजन रा कार्यक्रम राखी चिया। स्थापना दिवस रा सिलसिला माए देसी परदेसी सैलानिया ने खास स्मारक माए मुफ्त दाखिल दियो चियो। हॉकी इंडिया 5-14 जुलाई ताई ब्रिटेन रा दौरा सारू 24 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम रो ऐलान करती नो है। खेदेम शिलेमा चानू टीम री कप्तान बनाई ची है। भारत री टीम नुआ कोच टिम वाइट री अगुवाई माए जूनियर एशिया कप समेत आवती अंतर्राष्ट्रीय होड़ान री तैयारी रा सिलसिला माए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड माए 7 मैच खेलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन ली राव सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रजरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया चावेला। और देश माए नाना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुबितो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्रा रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। इंसागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो।

0: साथियों मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनने वाला सगला किसान भाई बहना ने भाई तेजे का निशु
2: राजकुमार भाई का निशु मोकला मोकला
1: मोकला राम राम।
2: तो किसान भाया तकड़ा हो नहीं, देखो के जेठ को मीनू उतरन लाग रही और
1: दूसरे जेठ को
2: तो अब जट्ठा छंटा छिड़को हो गयो, बड़े भी जान भी हो गयो, एर कई जगह नहीं हो रहे तो बीजा देखो के जमीन तैयार कर ली।
1: भाई तक क्या रो, जे आई पांच आंगल सात आंगल आलेड़ो बैठे तो देसी बाजरी बिन तो ठोकी दो, क्योंकि देसी बाजरी बिन को बुक्त एकदम मजबूर है।
2: भाई आपने खरीफ फसलों के बीजान को टाइम है जून जुलाई या करे, तो अब जून का तो कई दिन रहे, छह दिन मान लियो, तो इस टाइम में अगर बाजरी के लिए बात करा तो सात आठ आंगल बिरखा है ने भाव जा तो बाजरी बिजाई जा सके।
1: बिल्कुल।
2: और एक सागे सागे देखो एक बात हो रहा है, कोई भी चीज की बिजाई करो लेकिन वह करो तरीके से। अब पहली जे हिसाब से किया गया आप करता के भाई सगड़ा अनाज एक जगह मिला के बन बा दिया करता।
1: हाँ।
2: अब क्या है जी जी वक्त बीते तो बिया बिया मतलब किया गया खेती अलग अलग करा लग गया, मूंगा अलग करा लग गया, मोठा अलग करा लग गया, तिल अलग भाव लग गया, बाजरो अलग भाव लग गया, ग्वार अलग भाव लग गया, चौड़ा अलग भाव लग गया, तो बिहू किया गया लावणी सोरी हुआ एक तो एक किया है निनाण है वो तरीके से हो जाए।
1: देखो राजकुमार भाया निनाण है वो तो जो आप हड़ू बायो है या कल्टियों बायो है ने, यानी कतारों कतार में जो बायो है ने तो ही शोर हो गया।
2: बिग माइन भाई उम्र के ऊपर के आप कश्यो चला सा रेत पड़सी बाजरी का बुंटक है जड़िया पर,
1: भाई जड़िया पर पड़सी, फिर दूसरी बात है कि वो खाडे के मायने दाणो पड़सी।
2: हाँ
1: है ना, तो दो आंगल जड़ है जिकी जमीन के माओ जिसी निनाण जी आप काट सने, तो एक तो भी डोली के ऊपर की जी खतर बाकी कह करे घास घुसे खरपतवार ब खत्म हो जैसी और एक रेत लाग सी नाज की जड़िया में।
2: तो भाई नाज की जड़िया में भी रेत लाग सी एक सके सके देखो एक बात और है कह दो तीन आंगल बीज उंडो पड़ेड़ो रसी तो वो किया गया गर्मी ने तावड़े ने बिन भी सहन कर जैसी।
1: हाँ
2: क्योंकि अभी छह रहसी तो थोड़ी
1: अच्छा छह रहसी फिर मैं बरसी ने तो पानी तिसल के खड़े जागो ने।
2: हाँ
1: वो भी जड़िया में जासी क्यों खूट की ली में जासी पानी और ली के मैंने जड़े तो पूरा पानी पीसी वो ना
2: पूरा पानी पीसी। अब देखो बात करा कभी पहले वाली बात तो अब रही को नहीं, पहली तो क्या है कि ऊंटा से खेती करता।
1: हाँ

0: और खेती करिया करता आर भी कमाई ने मनो मनो लाग जा तो भी जान के टाइम में
1: बिल्कुल।
0: अब तो जहां आज में होती है मानो तीसरे दिन ने गांव की रोई समूची बाई जा और एक मायने देखो के किसान आदमी है जिको देखो नवाचार करे। अब नवाचार करने के लिए सरकार की एक कृषि मेला भी लगावे। कृषि मेला में अपन जाके देखा तो अपन कृषि का जगह औजार है नए नए तरीके का
1: बिल्कुल
0: वह देखने मिले। पहली क्या है कि जहा आपने औजार है निनाण करने को सिर वो कसी हो तो
1: हाँ
0: आजकल खुरपी या अनेक बात का औजार हो गया।
1: हाँ
0: एक सागे सागे ट्रैक्टर की प्रदर्शनी लागे बैठे।
1: अच्छा
0: तो बिक मायने आप भाती भाती का ट्रैक्टर देख कहा जी हाँ पहले वाला ट्रैक्टर है बस ज्यादा ताकतवर फोर बाई फोर ट्रैक्टर। एक सागे सागे जिया एरा है कल्टी है प्लाऊ है डिस है थ्रेसर है तो बाकी बात बात की प्रदर्शनी लागे। तो किसान भाई ने जखो पसंद आवे बिकी रेटा भी बतावे
1: नहीं बैत तो बतावे राजकुमार भाई पर मेला का मैंने तो हरेक बात का विशेषज्ञ भी तो आवे।
0: हाँ
1: जका बढ़िया कोई काम करे खेती के मायने जगह कर रहे हैं तो बन भी बुलाए जाए मेला का मायने कभी थे थारी थे को स्पेसिफिकेशन करियो ने भी की जानकारी दे
0: बिल्कुल बीजा भाई देखो के बे आपका बतावे विचार बतावे। और एक बात और है के वो क्या है व्यवस्थित काम हुआ है एक पंडाल है भी कमाई मतलब 50,000 आदमी बैठे हैं और बीजा देखो क्या बहुत ही पहुंचेड़ा विशेषज्ञ है बा कोई नंबर आवे
1: बिल्कुल।
0: और वह खेती बाड़ी से जुड़ेड़ा आपका अनुभव बतावे आपको भाषण देवे तो बिक माइन बहुत सी चीजा निकल के आवे। एक जिया अब आजकल जिया कीटनाशक के छिड़काव की बात कराने तो ड्रोन से वह लगी बिग प्रदर्शनी भी वह करे कभी वो ड्रोन है ओ इतना किला पानी तो ले जा सके।
1: अच्छा एक योजना भी चला है ड्रोन दीदी है ना भारत सरकार की योजना है ड्रोन दीदी के नाम से भाई महिला किसान के नाम से ड्रोन है सरकार भेंट करे और भाई ड्रोन है जिसका खेता में आपको काम करे
0: भाई भी कमाईने भाई निगरानी को काम और करे।
1: हाँ
0: जिया देखो किसान आदमी है और किसान आदमी पशुधन भी रखे पशुधन भी रखे तो बिन सागे की है पशु की रुखाली भी करनी पड़े सागे फसलों को काम भी करना पड़े। तो आजकल देखो के पुराणी टेम वाले तिर अड़ाव के मायने अग खड़े रहे चरान वाली तो आजकल बात रही हो आजकल तो कह रहे कि अड़ाव के चारू मेरे खाई लगा दी तार बंदी कर दी और पीछे एक लगा दी गेट बढ़ने को निकलने को बिग मायन पशुधन ने छोड़ दी तो पशुधन चराती देर चरो बाद में जंटी की छाया आराम करो
1: बिल्कुल।
0: तो बी सकी है गए वो एक प्रकार को कैमरों ही मान लियो तो बी से निगरानी जा
1: बिल्कुल
0: एक कभी कोई भी काम हो सही कब मशीन जो काम कर सी ने बिक मायने 19-20 को नहीं जी हाँ अब आपका कंप्यूटर कांटो है बीस तोलियो का भाई वो 10 किला है तो बाद में भी ने कितनी बार तोलो वो 10 किला है आज 10 किला तोल के और पैकिंग कर ली भी गिने तो वो 10 किला है आज
1: बिल्कुल।
0: और पहले आप तागड़ा तोलता तो बी कमाइन वो 10 किला 200 ग्राम ही जाता
1: फालतू जाता या कम हो जाता।
0: हाँ तो मशीन को अनुमान है ने वो बहुत ही सही है आजकल तो देखो विशेषज्ञ 80-80 मशीन बना दी कहरे के ऊपर जी आप मशीन लाग गई तो बिक माइन पा एक ब्लेड हुआ मतलब पत्ती हुआ लंबी जिया तो बिक माइन पॉइंट छोटेड़ा हुआ है कि भाई कितना पॉइंट आप बारे रखनी है
1: बिल्कुल।
0: तो थान 2 किला बीज गेड़नो है 800 ग्राम गेड़नो है 4 किला गेड़नो है बिन पत्ती में सेट हुआ है तो वह पत्ती भी हिसाब से सेट कर दी तो भी हिसाब से वो बीज बढ़ सी क्योंकि

0: को बीज तो या किलो मान लियो 800 ग्राम मान लियो तो ही
1: वो
0: पड़े।
1: आली कल्टी मोने विश्व एरेगा मालगा जीव है बे कल्टी में तो आली ही होए कि भाई पत्तियाँ सिस्टम मिगमा होए कभी नाज क्या गिरनो है क्या नहीं गिरनो है
0: एक मैंने एक सोरो काम वो कर दियो ने
1: हाँ
0: कि बीज है जो लाइन टू लाइन पर जीसी
1: हाँ
0: जना निनाण का डम सुई होगी
1: मैं खिंडे को नहीं आप छिड़को दिया भी सा वो
0: खिंडे को नहीं कमाइन किया है कि तई के सारा सारा सारा सारा वो बीज कतार में पड़सी एक
1: बिल्कुल
0: सीध में पड़सी ना
1: हाँ
0: बीच में जगह रही बीज आप कसी से निर्माण कर सका
1: वो काम तो ठीक हो गया
0: वो काम हो गयो। और आजकल देखो के जो किसान भाई ने कहो यहां कभी खाद है जो कि गोबर की खाद है बी की कोई ओड नहीं है
1: बिल्कुल
0: भाई आपा कितने भी प्रकार की और चीजा छिड़को बुलाई
1: हाँ
0: कै या कवे कै कर्म की चली जा अपन खाद की गुंजा
1: कौन जा
0: खाद के रेडी हो सी ने तो बीजा अनाज ने होना भी पड़सी।
1: होना ही पड़ी सच्ची को दे
0: और एक सागे सागे देखो एक बात और होगी क्या आजकल राम भरोसे खेती भी कम होगी क्योंकि सिंचाई का नया नया तरीका साल क्या हो
1: बिल्कुल
0: कभी खेतां का मायन देखा पा जो सौर ऊर्जा आली के लाइट आली के भांति भांति की जिया होवे लगी मशीना
1: बिल्कुल
0: ए जमीन है जखी देखोगा भाई बंटवारे में जिया पहले नाम कम होगी भी जोत
1: बिल्कुल
0: को आकार तो घटे
1: घटी है क्या दिनों दिन घटे को
0: है तो पहली 100 बीघा का मायन उत्पादन करता अब वो 30 बीघा में होवे लग्यो
1: हाँ
0: और कम समय में होवे लग्यो।
1: हाँ भाई देखो
0: अब
1: फर्क पड़ गया तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि पहले अगेती जी खेती हुए ने तो भी कमाइया कहता है बोले गए एक दो दिन को बाइन तो है जो कोई लागे अब हड़ू मावता तो 1.5-2 बीघा जमीन इकली हड़ू पहली बाई जाती मने मने बाइन तो चाल तो जब बाइन तो पूरु हो तो ने जब पहला जगह पहले दिन आला दूसरे दिन आला जगह ने बम निनाना जा तो
0: आजे तो
1: है तो भी कमाई ने के असर पड़ता तो नाज को अब क्या है कि 4-6 घंटा का मैंने पूरा खेत बाई जा तो एक दिन की जगह बाई है ने बा पूरी लाग जा जद पैदा ज्यादा हो लगी और वो बाइन तो चिप जा
0: और एक साग साग देखो के खेती बाड़ी को नहीं अब जब मेला की आप बात करिए तो मेला का मायने पशु प्रदर्शनी भी लागे बैठे
1: हाँ
0: उत्तम नस्ल का जिया जोटा है भैंसा
1: हाँ
0: है
1: बड़ो
0: सांड
1: दूध देने वाले
0: है
1: भैंस है
0: बड़ो दूध देने वाली भैंस है
1: बड़ो
0: बड़ो
1: दूध
0: दूध
1: देने
0: देने
1: वाले
0: वाली
1: गाय है बकरी है भेड़ है
0: ऊंटनी है जिया ऊंट है सुंदर ऊंट है
1: बिल्कुल
0: भेड़ है बकरी है तो बाकी नस्ल बताई जाए कि भी आ नस्ल की है और थे जानो कह जैठा लाखों किसान भेड़ा हुआ है
1: बिल्कुल
0: और बीजा प्रदर्शनी के तौर पर 20-25 ही भैंसा ने प्रदर्शित करी जाए
1: हाँ
0: तो वह कोई बढ़िया नस्ल की और बढ़िया किसान की तो हुई सी
1: हाँ
0: भाई एक मामूली किसान है जखे कर बढ़िया नस्ल नहीं हो सी वो तो बा मेला में लेर क्यों जासी।
1: बिल्कुल
0: तो बस भी देखो कि आपा ने सीख लेनी चीज है कि भाई जहां ज्यादा दूध देने वाली भैंस है तो क्या आ की तारीफ हम तो अपना जागी अपने बजट में है कि नहीं है के
1: बिल्कुल
0: भी को चारो पानी है।
1: हाँ
0: अब देखो कि पशु चाहे कोई सो भी हो बिकी लागत और लाभ दोनों देखना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अगर लागत और लाभ में अगर आपने बकरी पोसा रही है ने तो बकरी रखो की दिक्कत है
1: घना ही रखे और एक बात और बताऊं राजकुमार भैया कि बकरी है ना बकरी जिसो साफ सुथरो जीव कोई नहीं है अब बकरी घास खासी तो वो ऊपर कुंपड़ कुंपड़ तोड़सी गंदी चीज कदे उनका है भेड़ फेरी के जड़ियां काट लिया घास हो ने तो भी के झाड़ है दांत है जगह एकदम जमीन गाड़ के चले लेकिन बकरी है बा ऊपर बढ़िया बढ़िया चीज खासी और गंदी चीज एक ही कौन का बकरी तो बकरी को ही खातरी कही जाए कि दूध है जो निरोग हो और जदि है बच्चिया है जगह कूदता फिर इतना बदमाश हुआ है 5-6 दिन का बच्चिया हो जाने तो वो इन्हें डोली चढ़ गयो इन्हें कोठे में बढ़ गयो इन्हें भाज गयो इन्हें छात पर चढ़ गयो मान के उत्सुकता हो कि इन्हें देखा क्या है वो भी
0: बह के
1: दूध
0: देखा है बागा दूध में
1: हाँ
0: ताकत
1: दूध में
0: है।
1: ताकत है दूध में उछलने की ताकत है तो बकरी को दूध तो जितना तो निरोग है ना अभी तो कोई चीज को नहीं है
0: भाई बकरी

0: दूध भी निरोगैर ई के सके सके देखो एक बात और है के छोट किया जानवर है ना अपने भेड़ बकरी आंका की है बकरिया हो चाहे उरनिया हो वे आपने जद भी एडी लगे तो आधी रात का बेच के 5 रुपया
1: बिल्कुल बिल्कुल नगद नगद भुगतान हो।
0: अब आपा देखो भैंस गणी तकड़ी है लाख रुपए की भैंस है पर बिन आपड़ी अड़ी में बेचनो चाहना जना बा कौन बिके
1: बा लाख की कौन बिके बा और भी मतलब आगले के हिसाब में बिके
0: आगले के हिसाब में बिके फिर भाई जखे का भैंस से लेने की जीव हो सी ने वो भी भैंस ले सी और भैंस बांधने जखे का जगह ही कौन बी बाहू तो बुलाई बा आधे रुपये में वो केले सी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: तो आप के कर सकांक है जिया बकरी भेड़ आन तो एक प्रकार का एटीएम मानस का
1: हाँ
0: कभी जद आपन जरूरत पड़ी
1: बिल्कुल
0: जद की है कि और फिर एक बात और आंका गाय का जगह तो हिला मारता फिर है।
1: हाँ बिल्कुल गांव गांव गली गली हिला मारता फिर है सही बात है।
0: हाँ और बिक मायने फिर एक बात और है के रेट में ही कोई 19-20 वाली बात हुए क्यों कह अरे फिर नगद रुपया भाई एक जहां मतलब आपने कोई गाय लेना आए हो भैंस लेना आए हो या ऊंट लेना आए हो
1: बिल्कुल
0: तो आपनों कोई रिश्तेदार आए हो या रिश्तेदार के कोई जानकार आए हो तो वो पूछो बोली थारो ऊंट कितने रुपया में दो बोले मैं तो 50,000 में दिया बोले लो 45,000 की साई। अब साई का मान 20 रुपया पकड़ा दे तो आपा बार आ कौन कैस कहाँ कह 45,000 मारा अट्ठे काटे गिण जाओ
1: बिल्कुल।
0: अब वे कह जा पिछा 10 दिन ना हो 15 दिन ना हो क्या हो बिको कोई कहे कौन जा सके
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आपा अपने बकरिया कार उड़निया कार बाका पिछा तो रेट तो बाद में दवा पहली हाथ में पकड़ा है
1: बिल्कुल पहले पकड़ा इताले हो इताले हो आप कह कर वार्तालाप करा बस आगे ना भाई मैं तो इतम देचू इतम देचू वो पकड़ा वो करे ना इता लियो कह नहीं नहीं इतम कौन दू वो ओजो पकड़ा हुआ कि 100 रुपया और फालतू लियो या करता करता बातचीत करे तो पहली धन पकड़े हो पहली पिसा दे
0: पहली पिसा दे
1: बिल्कुल।
0: तो कड़ो मतलब है कि भाई आप आपकी जगह की है कि सगड़ो पशु तो नहीं भी कोई महत्व है अब तो, बढ़िया नस्ल को पशु सी ने वो अगर आप रखा ने तो लाभ की स्थिति में
1: भी की जानकारी मेला मिल सी
0: मेला का मायने मिल सी प्रदर्शन का मायने मिल सी और जखा विशेषज्ञ है वे भी आवे तो बताओ कभी के हिसाब से और एक सागे सागे जखा प्रदर्शन नहीं लगा रखी है वे भी बताओ कि भाई आ भैंस है आ फलानी जगह मेरी लैडी है ये नस्ला है आ दूध इतना किला दे वे आ बढ़िया गाय है इकी कौन सी नस्ल है कितना किला दूध दे है।
1: भाई किसान भाई ने पशु खरीदते वक्त की जिकी सावधानी ने भाई तो खुद ने रखनी पड़े क्योंकि बेचनी हो तो बोपारी भी हो मेला में ज्यादातर बोपारी हो अब बोपारी जगह तो आ है कि हर बांध को पशु खरीद के लिए गया और भाई ये सोचे कि आप इन्हें कहन क्या मुना पोकाट के टपा दिया भाई 1,000 बांध का हथकंडा अपना है पण जको जानकार किसान है जानकार पशु पालक है जके थोड़ा सा ध्यान है कि अपन के प्रकार को पशु चाहिए और भी पशु में के गुण होना चाहिए तो वो भी पशु देख ले बिन पतो लग जाएगा इन पशु नशो कराइड है या इन पशु ने कुछ चीज दे रही है जिकी वजह से वो शांत खड़े हुए है ना तो आ चीजा को बन पतो लग जाए तो इसे पशु नहीं खरीदना
0: भाई देखो के जखा जानकार आदमी है ने बारे में पूछ लियो और आपको अनुभव भी सके काम आ
1: बिल्कुल
0: तो इस हिसाब से आपन किया जगह कृषि मेला लगे आंखों लाभ है उठानो चीज है और अब देखो कह देखो तो एक लोक रचना सुना दे
1: सुना दियो सा सुना दियो
0: तो सुनो मोहन राम चौधरी और साथी गाइडी आ लोक रचना
2: छोड़ो ये संग

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: तो राजकुमार भैया, अभी आप मोहन राम चौधरी और पार्टी की आवाज में लोक रचना सुनी और एक मैं कह रहे हो कि भाई के बैराग ईश्वर जागियो के समर्पित ही होगा अगले नए काम ने। अपना किसान भाई है तो समर्पित है खेती ने।
2: बिल्कुल भाई,
1: खेती के प्रति बैराग जाग जाने तो आपने खेती बाड़ी में चार चांद लग जाए।
2: भाई देखो, कोई भी काम है ने वो कोड हुए। एक तो क्या है जिया कोड हुए कभी खेत चला, एक कवे का खेत जाया जना बिन कोई चार पांच बार कह जना वो कह तड़के जना वो भी कभी रुचि कौन। तो आई बात जिया पशुधन में, एक तो क्या है कि जिया रुचि हुए कभी भैंस ने नीरी को नहीं तो भैंस ने छानी नीरिया।
1: बिल्कुल।
2: एक तो सीधो जिया तंगली हूं जिया बरके खड़ लियो और भी कठाण में गाली है। एक भाई छानी है, भाई कुत्तर है, भाई तुड़ी है
1: बिन, के छान, निकाल हाँ, के
2: तो वो भी गाल के आए और फिर भी कबाद कमाइन वो बैठे पशुधन ने निहार सिर भी गए दो चार बार हाथ फेर दे सी जना वो पशुधन का भी आत्मीयता है।
1: बिल्कुल।
2: अब जहा पहले आपने देखो के ऊंट मोकला गिर गिर में होया करता।

0: तो ऊंट ने के अगर कन्ने बैठ के डूंखला चुगो करता बोरम चराबो करता, तो बा ऊंटा कैर बा आलिया कैर बड़ी आपस में आत्मीयता होती,
1: बिल्कुल अंतिम
0: और यहां बहुत ही कम सुनने में आतो कि ऊंट बिगड़ गयो, क्योंकि पग एक प्रकार को प्रेम हो जाए करता।
1: हाँ
0: अब देखो कि पशुधन की बात आ, पशु रखो ने तो बिन प्रेम से बिन बढ़िया तरीका रखो।
1: पशु के साथ मिलजुल के रहो।
0: हाँ
1: विश्व के गया पशु घर के आदमी से प्रेम करना लग जाए है। अच्छा कई बार क्या हुआ है कि यहाँ की स्थिति आ है कि पशु रक्षा भी करे
0: हाँ
1: घर के आदमी की है,
0: करे।
1: कि वो आपका आदमी जाने जगह भी केयर करे ने सुबह शाम, तो वो आपका आदमी जाने बाकी आदमी कने ऊपर आदमी को न्याण दे ऊपरी चीज ने को न्याण दे है। वो पशु अपना आपने भी घर को राजा समझे कि भाई मैं ही हूं जो कुछ भी हूं चौधरी है, तो वो काम में पशु जदि करे जब पशु सागे घर का सगला मिलजुल के रहे।
0: अब बिक माइन देखो, पहली बात तो कभी आपा साफ सफाई प्रिया तो पशु ने देखो के हाथ कौन दे रखे, अपन हाथ दे रखे,
1: बिल्कुल
0: तो एक तो किएगा पशु की पशुशाला भी नियमित रूप से सफाई करना।
1: बिल्कुल
0: अब सफाई करने से क्या होसी,
1: वो आपा राजकुमार भाई बन्या रखा जो दियो है, नहीं तो पशु आपने ज्यादा सफाई वालो है। पशु कटे भी बैठे गोरे जो आपके खुराओं जगह करके है वे खुरी करेगो, पहली खुरी करके बटे बैठेगो यानी साफ करके। अब आपा खुट्टे पर भी बांध दिया, अब भी मजबूरी हो जाए कि वो नए खुरी कर सके, फिर भी कादे में एक एक जगह पर भी क्या ही खुरी हो जद वो बैठे।
0: भाई देखो के अब अड़ाओ हुए ने जना तो के आपा जी यहाँ नोब जी खींचा ने बी टेम पसवानी टोर ले जाओ और अड़ावा का मैं छोड़ दियो,
1: बिल्कुल
0: बठे कोई आपन साफ सफाई करनी की और की करनी, पशु जितनी देर चरेगो बीती देर चरेगो,
1: बिल्कुल
0: फिर आपकी मत्तई बोखराली करके जाटी की छाया
1: बैठ जाओ।
0: बैठ जाओ। और ए जगह भांति भांति का जगह जिया चिंचड़ी और है ऐ किए खुले पिरते पशु का कम लागसी।
1: कम लागसी फिर खुले फिर तक ने गुरसली है कागलो है सोनचिड़ी है ए जगह है ने ए परजीवी जगह मान तुगले है।
0: और एक साग साग देखो एक बात और कहनी चाहो के पशुओं को जो मौसमी टीकाकरण है वो अपन करवा लेना चीज है। एक देखो क्या एक भ्रांति है क्या टीको लागने से पशु को दूध सूख जा, तो आ कदी सही बात को नहीं।
1: बिल्कुल
0: टीको लागने से आपनों पशु है जो निरोग रसी, टीके से लागने से कई प्रकार की बीमारी है आपने पशु को ना
1: चांच
0: होगा।
1: के आने वाली बीमारी ने बहुत सुरक्षा हो जाए।
0: तो अपन टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण की बात भी यहां कै जका पशु औषधालय का मैंने जका दक्ष डॉक्टर या चिकित्सक है ने बस से टीकाकरण करवाओ,
1: बिल्कुल
0: या नहीं कै बकाए कै नीम हकीम खतरे जान।
1: हाँ
0: तो कोई आदमी है बिन बात चीजा को नॉलेज ही को नहीं,
1: हाँ
0: तो देखो पशु का भी दर्द हुआ
1: बिल्कुल
0: आपने सुईगड़ो ने दर्द को नहीं होगी
1: बिल्कुल हो जाओ
0: तो पशु का भी दर्द हुआ तो वह विशेषज्ञ जगह है,
1: हाँ।
0: वह अगर टीकाकरण कर सी तो पशु बेरोगी पड़ दे।
1: देखो सुनना पशु है, अब पशुआन कई बात की ताकत प्रकृति में मिलेड़ी हुए कि भाई गहन कोई अचानक आने वाली बीमारी है ने बा आगे तो पशु है जगह ज्यादा दुख कर पाए भाई, एक दो दिन बीमार रहा और पटती से मर जा। अब के है कि पशु आगन प्राकृतिक चीज है, क्योंकि अगर खुला रहा पराक्षा ने पशु घर से बने डे भी नहीं घुमा गिर आशा ने बीमार अलग हो। अब आपने की है कि दिनोड़ी गाय भैंस जी दूध दे रही है बना पंग अलावा ही को नहीं भाई, ये है कि 15-10 पावड़ा एक खुंटा दूसरे बांध दी दूसरे पैरडे बांध दी जो 15-10 पावड़ा भाई रोज की मान के चलो 100 पावड़ा ही चले पशु
0: हाँ 100 पाउंड तो ज्यादा है।
1: ज्यादा है। अब पशु है जो किए गए खुंटा ही खुंटे पर इन्हें मैंने चक्कर काट के भटे बैठ जा भटे उठ जा भटे गोबर कर ले भटे पेशाब कर ले है,

0: एक तो वो बैठे वो कादो करे और पशु ने जित तो बारे घुमा के लिया ना अपा बितो ही ज्यादा फायदो है क्योंकि आदमी भी तो घूमने जाए है फिर बैठे बैठे आदमी में भी बीमारियां उत्पन्न हो जाए तो घूमने जाए आदमी तो पशुओं की तो हालत ही और खराब करा के अपा
1: भाई देखो कह खेत तो आप वापस सुन लीजिए आने तो भी की तो ओडी को नहीं है क्योंकि बाद में क्या है आपने पशु पानी को नहीं पाए और बिन चराये को नहीं पाए चिंता तो मिट्टी की गई क्योंकि आपा भी पशु के सगा तो खेत का मैंने अड़ाओ का मैंने छोड़ दियो और आजकल देखो अड़ाओ से जाप तो करेड़ो रखे और आपको निर्णाण करो की भी काम करो तो वो क्या है कह पशु ने देखो कह अगर खुल्लो फिर तो रवे ने तो भी बीमारी भी कम लाग सी एक की है कह पशु खुला गयो बछड़ियों खुला गयो पाटियों खुला गयो चूंग गयो वो भी कन्नी नहीं हो सी ना खटू चूंग सी तो बात चिंता मिटेड़ी रहा एक नहीं बार बार में संभाल के आओ कभी पाटियों सही ढंग से बंद रही एक टोकड़ियों बंद रही एक अब आपा अपने जो मान लो गाय भैंस है बिन खेत ले गया और बछड़ी और पाटी घर हाँ बंद रहे तो चिंता कौन रही ने
0: भाई आपने चिंता को नहीं पशु की चिंता रहे वो पशु बाजू आशी बिन के लिए
1: हाँ
0: बिन के लिए अलग ही आव होशी और दूध उत्पादन में वृद्धि होशी क्योंकि वो पशु बिन चुंगाने के चक्र में बाजू आशी तो बिन उस टीको जो को हार्मोन है तो बहुत ज्यादा स्रावित होशी और वो पशु ज्यादा दूध देशी
1: सही बात है बिल्कुल भाई एक तो ज्या भी छान के माइन तो गा बंद रही है और बी में बछड़ी बंद रही है तो बिम में और एक जहाँ अड़ावे मचर के गा आई है और बाहेज करके दूध देसी तो बिम तो देखो फर्क आई।
0: तो राजकुमार भाई आप ये बात और टोरांगा आप एक सुन लिया पप्पू मस्ताना की आवाज में लोक रचना
1: सुनाओ सा।

0: तो अभी आपां सुनी आलोक रचना पप्पू मस्ताना और साथी गाइडी
1: बिल्कुल।
0: और अब देखो अपनी चर्चा ने जी आगे बढ़ावा
1: बिल्कुल।
0: कभी आप पशुधन की बात भी करी, कृषि मेला की बात भी करी, अब क्या है जी अपनी खेती बाड़ी की बात है तो एक मायने जखा नवाचार आ रहे हैं।
1: हाँ।
0: नवाचार के मायने संचार क्रांति है। हाँ। रेडियो मान लियो, टेलीविजन मान लियो,
1: अपने दुनिया की जानकारी इकट्ठो मिले, इन बात की जानकारी मिले तो
0: बिल्कुल। तो आ जानकारी की है कि जिसका संचार का माध्यम है बहु मिले
1: बिल्कुल।
0: भाई जहाँ कृषि की पत्रिका है,
1: हाँ,
0: टेलीविजन है या मतलब जिसका कृषि ज्ञान केंद्र है, अखबार है,

0: बस किया गया अपने आ जानकारी इसकी मिले और इस जानकारी ने जगह देनी है वह विशेषज्ञ है
1: बिल्कुल,
0: यानी बैंक को भी क्षेत्र गमन काम करेड़ो है। अब आप की है कि बके ने कभी आड़ू बात करा तो यहां कह दिया कि सूझे ना बुझो सुखो
1: बिल्कुल
0: भाई, आदमी जिया कोई चीज को बिन बेरो को नहीं है तो वो अगर दूसरे ने पूछ ले तो पूछने से कोई छोटो को नहीं है
1: ना को नहीं है।
0: तो आई बात जिया अब संचार क्रांति की बात, एक तो जिया मौसम की बात है। अब अपन जिया मिल गयो जानकारी कि भाई काल इतना बजे अन्या आसी या मैं आसी या तूफान आसी
1: बिल्कुल,
0: तो आपा की है कि आपने पशुधन को और आपनो और खेती बाड़ी को और सगड़ो वो पहले जाप्तो कर लिया
1: जाप्तो कर लिया
0: और अचानक आने वाली विपता हूं आपा टल जाओ। भाई आप अपन बेरो पड़ गयो कभी शाम को 5 बजे तकड़ी आंधी आसी तो आप अपने पशुधन ने लेके खेत 4 बजे आ जा या के कृषिया कह दिया खेत में कोई मकान है और है तो भी कम उठे पशुधन ने खड़े कर देसा आप भी माइन बैठ जिसा कहो मतलब का आदमी आपकी सुरक्षा जी कर सके
1: बिल्कुल।
0: एक सागे सागे देखो मौसम की बात है तो आ कहनी चाहवा किसान भाई ने कह तकड़ी आंधी सुनतो आवे ने जना कोई पेड़ के नीचे कदी खड़े नहीं होना, पेड़ है जो की है तूफान में आंधी में कि अगर टूट सके
1: टूट सके है और फिर ऊपर बिजली पड़ने की संभावना रहे रोई के वहां।
0: तो देखो उसके जब तक तो क्या है कि जहाँ कोई पक्को मकान है भी के अंदर चले जाओ या कोई ठाडी खींप हुए बिन पकड़ के बैठ जाओ कड़ो मतलब का आदमी देखो बके है अड़क
1: मोटे ना खुली जगह ठीक हुए।
0: हाँ
1: देखा कोई ऑटो है कोई स्थाई कोई मकान वगैरह नहीं है और नहीं है तो पेड़ ना हो तो खुली जगह ठीक है।
0: हाँ खुली जगह ठीक है। और एक सग सग देखो एक बात और कहनी चाहूं कि आप प्रकृति है ने आ क्या है आपके हिसाब से सेट करे अपने हिसाब से कौन करे।
1: हाँ
0: तो अब जिया अब इस साल जगह तूफान आंधी आया ए पहली कौन देखा 10-15 साल में देखे को नहीं था
1: आज के रोज क्या हुआ राजकुमार भैया।
0: हाँ अब आदमी प्रकृति के साथ जी साहब को व्यार करे प्रकृति फिर भी साहब को व्यार करे
1: बिल्कुल।
0: अब आप देखो पहली अड़सोतियों करने जाता
1: हाँ
0: तो हाथ जोड़ता
1: हाँ
0: कह तो चिड़ी का भाग को दया कमेडी का भाग को दया गया का भाग को दया है एर कितो ही मतलब प्रार्थना करता सही ढंग से मतलब घर से छाक आती पिंडी रातो और को तो भी मैं किया है प्रकृति ने आप एक दानो मतलब बो के आता अभी का झार दाना आपने मिलता
1: बिल्कुल।
0: तो आ अगर आपने मन में चेष्टा रही ने कभी नवाचार अपनाओ बनाए लेकिन अपन प्रकृति के साथ जुड़े रहना है।
1: अब राजकुमार भाई अपा अपने किसान भाई ने बता दिया कि संचार क्रांति जी है बिक मायने कई सारी चीजें हैं अपन बोली सारे ऐप है बांको बेरोकोनी बोली सारी वेबसाइट है जिके हम बेरोको जिके अपने मोबाइल पर खुल सके तो एक जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मोबाइल ऐप है बांको अपन बता दें कि भाई एक तो है एम किसान पोर्टल तो बिम के एक लाखों किसान है इन्हें बान जानकारी मिले मौसम की है और कृषि विशेषज्ञों मिले मौसम की चेतावनी होगी बुआई की सलाह होगी और सरकारी योजनाओं की जानकारी होगी।
0: भाई सरकारी योजनाओं की आपन जानकारी उसी ने जद की है का आपा आखड़ा को नहीं भी में कोई भी बात हो चाहे चाहे केसीसी बनाने की हो चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की हो चाहे मतलब अपनी जमीन के मायने बढ़िया मतलब बीज मिलने वाली योजना हो मतलब हर चीज को अपन जानकारी उसी ने
1: बिल्कुल।
0: जद किया गया आप अब देखो आज सरकार है जो कि बढ़िया बीज है जो कि बांट रही है अब भी बीज पर अपन विश्वास करना चाहिए।

0: वो बीज है जिनको आप निःशुल्क मिल रही, निःशुल्क मिल रही है, जना आपस संग कीटक शोक बीज है और भी बीज का शहर में जाके दाम लाग रहा है कुछ जीव, जना सोचा वो बहुत तकड़ो है। तो कड़ो मतलब का सरकारी योजना है जो कि सरकार किसान के फायदे के लिए चलाई, तो वह योजना को आपने लाभ लेना चीज है। अब जहाँ सरकार है जिसकी कृषि यंत्रा पर सब्सिडी देवे, तो एक तो आप जहाँ मतलब फार्म भर के बिग बाद में वो कृषि यंत्र खरीदा तो बिग मैंने आपने सब्सिडी भी आसी और लाभ मरे से आप।
1: बिल्कुल
0: एक ही है मतलब बाजार से कोई चीज खरीद रहा जिया खरीद रहा तो जो तो आपने देखो ज्यादा रुपया ला गई।
1: बिल्कुल
0: तो अपन की एक हर प्रकार की योजना की जानकारी होनी चीज है और विषय की है आपने फायदो है जो रहसी।
1: हाँ, और फिर भी के अलावा जहाँ वास्तविक समय पर बाजार की जानकारी है
0: बहुत बढ़िया बात।
1: तो एक मैंने किया जहाँ एक तो है ई नाम, ई नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट,
0: राष्ट्रीय कृषि बाजार।
1: हाँ, तो वो केक रह के किसाना ने बिचौलिया मुक्त कर दे।
0: बिल्कुल,
1: और किसान है जगह घर बैठे हैं जगह आपकी फसला के बारे में जानकारी ले सके देश के। फिर दूसरी बात है मौसम की सटीक जानकारी, वेदर एडवाइजरी, वो आजकल सगले मोबाइल आगे मैंने ऐप आवा है मौसम की जानकारी देने वालों के बरसात कौन से दिन दिखा रहा है, बीस दिन जगह दिन दिखाई होने बीस दिन बरसात थोड़ी बहुत आए इस रहे।
0: हाँ बात है ना भाई, तकड़ी ना आओ तो छंटा छिड़को जरूर।
1: हाँ, और आंधी दिखाई तो आंधी आए सर।
0: सही बात है।
1: तो इन बोले IMD इम के होगा SMS हो सगले मोबाइल में दिखाई में रजिस्टर्ड होने बाकी सारा सूचना पूछे है कि भाई आज या तड़का या परसों इतना बजे तक आंधी आने की संभावना है तारक क्षेत्र में है।
0: बिल्कुल हाँ, तो आपको प्रबंध करो जा सके।
1: हाँ, तो आदमी आपको जुगाड़ कर ले। फिर दूसरी बात है और है कि किसान कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर पर 1551 पर आप कोई भी जानकारी ले सका।
0: भाई किसान कॉल सेंटर तो सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक।
1: बिल्कुल, और हर बात को विशेषज्ञ बड़े मिले आप पशुधन की अपनी फसलों की सगली जानकारी बैठा ले इसका।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐ कई का आनंद है ने वह संचार क्रांति का ही आनंद है।
0: बिल्कुल,
1: आपने किसान भाइयों ने ज्यादा से ज्यादा संचार क्रांति को फायदा उठाना चाहिए है और बिंगो पुख्ता ब्यूरो पड़ जा जब आपने पुख्ता प्रबंध बिंगा करना चाहिए। अब राजकुमार भैया एक लोक रचना और सुन लिया, मुरली राजस्थानी और पार्टी की गायडी।

0: तो राजकुमार भाया, अब वक्त है जो अठाई ताणी है आपा अपने सुनने वाला सगड़ा छू करा सीख लेवा और करा राम
1: राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज, कयामत फिल्म का ये गाना, समीर का गीत, नरेश शर्मा का संगीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: रुक जाना।
5: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फूल और कांटे फिल्म से, कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज, रानी मलिक का गीत, नदीम श्रवण का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, केशव देव तंवर के साथ।

आइए आपको सुनाते हैं कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गाना, अलका अग्नि कुमार सानू की आवाज, देव कोहली का गीत, हिमेश रेशमिया का संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी चुरू।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अलका अग्नि के साथ कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना। समीर का गीत, संगीतकार नदीम श्रवण। आज के गुलदस्ता में आपके लिए सजे हैं कुमार सानू और अलका अग्नि के गाए कुछ चुनिंदा गाने।

हाँ, मैंने भी प्यार किया। इस फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज 8 9।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में

0: चेतावनी जारी की गई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसर ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा।

0: दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from...
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF

0: एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

सीमा मिश्रा और साथियों की गई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और

0: और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
0: जी जी।
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। 5वीं जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं। इवन एआई से रिलेटेड और

0: इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए, और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन

स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की उन

0: एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
2: जी,
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
3: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी।
3: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
3: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12 तक। फिर
1: जी जी
3: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। ऐसे में शॉटपुट जैवलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
3: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके

0: बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा मैं सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
2: Right now, I will be completely honest. I don't know about startups and all, but as of today, what I'm trying to focus on is to come up with the most sustainable solutions to all the societal problems. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now, I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर। And I don't know how to explain it, to be honest.
0: Thank you so much, Aishi. आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने experience, अपने innovations के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत detail में बताया. Thank you so much.
2: Thank you, sir.
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल. वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
3: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरनमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया,

0: के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा है, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो तो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, कि हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ ही कैन डू वेल, ही कैन सर्वाइव। तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था मेरे लिए। मैंने काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट्स रहे थे, मैं चला लेता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना
0: जी
1: चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेट कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत
1: जी
2: का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।

0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से. इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है. तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं. अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की.
1: मेरा जो एक एआई सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस. ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स. ये जो एआई इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो.
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं.
1: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है.
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए. धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में. श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी. और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे. आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
3: चर्चा का विषय है
4: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर. हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 10 बजे हैं. आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सरोद वादन. राग है स्वर समीर और कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खान से सरोद पर राग स्वर समीर। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं रोशन भारती की गाई हुई कुछ गैरफिल्मी रचनाएं। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

आकाशवाणी चुरू से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रोशन भारती की गाई कुछ गैरफिल्मी गजलें।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रोशन भारती की गई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: कब तक तुम प्यार मेरा पहचानोगे?
2: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ

0: बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।